हमारी भी यही आशा है, यही मनोकामना है कि हमारा तिरंगा लहराता रहे और यू नो चांद तारों तक जाता रहे और आसमान छूता रहे. और आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम मी आरजे सिमी एंड आर इंटायर फनेशन नेटवर्क. और अगर आपने अभी तारा ज़्यादा स्टे ट्यून किया है तो बहुत सही टाइम पे ट्यून इन किया है, क्योंकि अब वक्त हो गया है एक अमेजिंग सा गिव अवे का. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका जवाब देना है, और अगर आप हुए वो लकी विनर तो आपको चंडीगढ़ बाइक से मिलेगा $10 ऑफ पाने का मौका ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 ओनली ऑन डाइन इन ऑप्शन. काफ़ी अमेजिंग है यहाँ का खाना, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. और आज का स्पेशल गिव अवे है, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है तो थीम भी वही है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की थीम है. हम जो है आपसे हम आपको तीन क्लूज देंगे और आपको गेस करना है कि हम किस फ्रीडम फाइटर की बात कर रहे हैं. आपको मुझे कॉल करके उनका नाम बताना है. तो राउंड वन जो है शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए. मैं आपको तीन क्लूज दे रही हूँ. पहला क्लू ये है कि मैं एक ऐसा फ्रीडम फाइटर था जिन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया. क्लू नंबर टू, मुझे 23 साल यानी 23 इयर्स की उम्र में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया. ओके, वो शहीद हो गए. क्लू नंबर थ्री, मेरा नाम शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है. तो आपको बताना है कौन है भाई शहीद आजम. और फोन लाइंस हमारी खुली हैं जवाब लेने के लिए. नंबर है 972-235-5555.

ये सॉन्ग काफी इमोशनल है, मैं जितनी बार भी इसको सुनती हूँ मतलब ऐसा गूज बम्स हो जाते हैं मेरे, और मुझे और आई थिंक कि बहुत सारे हमारे लिसनर्स को भी ऐसा लगता होगा कि हम अपने शहीदों को जितना भी उन ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर लें, जितना भी उनको थैंक यू बोल लें, हम उनके जो हैं कभी भी वो इनफ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मतलब अपनी जान जो है हमारे लिए वो गवा के हमारे फ्रीडम के लिए ये सब किया. सो वी आर वेरी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम, एंड आई होप कि ये जो देशभक्ति की भावना है हम सब में जगी हुई रहे, हम सारे जनरेशन्स में ये आगे बढ़ती रहे. और ये गिव अवे राउंड यहाँ पे खत्म होता है. हमने आपको क्लू दिए थे, 3 क्लू, और फिर आपसे पूछा था कि ये कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, और बहुत सारे कॉलर्स, मतलब दिस अभी मेरे आरजे हिस्ट्री में अभी तक के मैक्सिमम कॉल्स मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आए हैं. सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय लिसनर्स, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड प्राउड कि आप लोगों ने जो है इतनी जल्दी पकड़ा. और जवाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दिया था. जवाब है शहीद भगत सिंह. 23 साल की छोटी सी एज में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी. उनका नाम आज भी करेज और पैट्रियटिज्म का जो है सिंबल है. और आज की जो हमारी विनर हैं, जो फटाफट एकदम कॉल आया था उनका एकदम सवाल खत्म करते ही, वो है मंजरी जी. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50. और चंडीगढ़ बाइट्स के ना स्पेशल थाली मंडे टू फ्राइडे, ये काफी फेमस है. एक्साइटिंग न्यू डिशेस होते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं. हर लंच में आपको जो है मंडे वाला खाना ट्यूजडे नहीं, ट्यूजडे को कुछ नया फ्लेवर नया खाना मिलेगा. ये लोकेटेड है मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन, आप जरूर जाएं. और अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स या फिर मेन्यू के बारे में, तो आप उनके वेबसाइट भी जा सकते हैं, which is chandigarhbites.com.

अगर आपका भी सपना है कि आपका छोटा बड़ा जैसा भी हो लेकिन आपका अपना एक प्यारा सा घर हो तो ड्रीम होम मॉर्गेज आपकी मदद कर सकते हैं इस चीज में, और वो ऐसा करते भी आए भाई साहब 1998 से। वो सारी फैमिलीज जिनको अब सपना था उनके अपने घर को होने का, उनके होम ओनरशिप को, के सपने को, ड्रीम को रियलिटी में बदला है उन्होंने। वो पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस देते हैं और इनका जो प्रोसेस है वो काफी स्मूथ है, स्ट्रेस फ्री है, तो आपको टेंशन लेने की तो कोई जरूरत नहीं होगी। 50 स्टेट्स, ऑल द यूएस के जो 50 स्टेट्स है उनमें इनका लाइसेंस भी है, तो आप जहां चाहे वहां घर ले सकते हैं। और टीम तो एक्सपीरियंस है ही, 1998 से है वो भाई, उनको सब पता है यहाँ के बारे में, और आपके लिए एक राइट लोन ऑप्शन भी लेने में भी मदद करते हैं जो कि टेलर किया गया होता है आपकी जरूरत, आपकी नीड के अकॉर्डिंग। तो चाहे आप अपना पहला घर खरीद रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो या फिर रीफाइनेंस कर रहे हो, ड्रीम होम मॉर्गेज जो है आपको इस जर्नी में काफी मदद मिलेगी उनसे। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं एट 972-245-5626 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज dreamhomemortgage.com। और अगला गाना जो है हमारे लिसनर ने एक रिक्वेस्ट की थी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आई होप यू गाइज विल लाइक इट।

आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। वक्त हो गया है 7:38 और अभी ना मेरा और आपका साथ लंबा होने वाला है, पूरे 9 बजे तक रहने वाला है। 3 घंटे के लिए आते हूँ मैं हर सैटरडे को और आज इतना खास दिन है तो मैं अपनी तरफ से एज वेल एज फ्रॉम द इंटायर फाइनेंशियल नेटवर्क टीम आप लोगों को 15 अगस्त की जो है बधाइयां देना चाहती हूँ। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू वन एंड ऑल। और अभी एक बहुत फेमस सॉन्ग बज रहा था, देश रंगीला, और ये सॉन्ग ना इंडियन स्कूल्स में हर 15 अगस्त पे इस पे एक डांस तो ऑलमोस्ट कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। और इतना ही ज़रूरी है कि अगर आपको जो है या आपके दोस्तों को, किसी भी एक्वेंटेंस को किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट हो गया है तो अमर ख्वाजा को कॉल करना भी ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि वो ना आपका केस लड़ेंगे और आपको ड्यू कॉम्पनसेशन जो भी आप डिजर्व करते हैं वो दिलवा के ही मानेंगे और इंश्योरेंस कंपनी का भी स्ट्रेस वही लेंगे। आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। और आपको तब तक पे नहीं करना होता है जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते। अगर आपको एक फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं उमर ख्वाजा एंड हिज टीम को एट 4693005046 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज attorneyomar.com।

भाई देखिए, ऐसा है कि मैं यानी कि आरजे सिमी तो कम्प्लीटली इस बात से अग्री करती है कि ये देश यानी इंडिया काफी अमेजिंग है, बहुत ही अतरंगी है और इसके जो देशवासी हैं वो भी काफी कूल है और बहुत बहुत बहुत सारी जो है उनमें टैलेंट है और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं ना आज मेरी बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आपका क्या व्यू है अपने देश के बारे में। अगर आपको इंडिया को डिस्क्राइब करना हुआ विद इन 60 सेकेंड्स यानी इन 1 मिनट, तो आप कैसे करेंगे मुझे भी बताइए। कॉल कीजिए 972-235-5555।

0: देखिए उंगलियां जो है, सब उंगलियों पे सबको नचाने का तो नहीं पता, लेकिन उंगलियां चटवा जरूर सकते हैं अगर आप होको जाएं, क्योंकि यहाँ पे वो ऑथेंटिक इंडियन फूड मिलता है। इनका चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, फ्लेवरफुल करीज, और तो और फेमस होको कोल्ड कोको, ये सब खाने के लिए ना अब आपको इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहीं अवेलेबल है फ्रिस्को में। एड्रेस है 2693 प्रेस्टन रोड, 2000, और यहाँ पे जाएं और ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर्स का आनंद लें, उसको एंजॉय करें। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज होको.us।
1: अलवा

ये सारे सॉन्ग्स और आज का स्पेशल इंडिपेंडेंस डे सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय एजे फिनटेक्स, व्हिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस। ये ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज, और जो आपके अनटैप्ड पोटेंशियल है ना, चाहे आप एक इंडिविजुअल लेवल पे देखना चाह रहे हो ये सर्विसेज, या फिर अपने स्मॉल स्केल बिजनेस, या फिर एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, कैसा भी हो, ये आपके लिए बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो डू रीच आउट टू देम, यू कैन कॉल देम एट 469-942-9888, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज ajfintechs.com।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
5: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
4: सच में? सब संभालेंगे.
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन.

0: फैशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना, बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
2: क्या मतलब?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
2: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
4: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails, and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं.
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं.
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं.
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
1: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं. और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो. वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
9: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

आप सुन रहे हैं फनेशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट चल रहा है फॉर 15th अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे। एंड जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है उन सबको फ्रॉम आरजे सिमी एज वेल एज फ्रॉम द इंटायर फनेशियल नेटवर्क अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज ना मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपको इंडिया को डिस्क्राइब करना होता इन 3 वर्ड्स तो वो 3 शब्द क्या होते, मुझे कॉल करके बताइए। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंग्लिश में भी बोल सकते हैं, पोइट्री कर सकते हैं, स्टोरी सुना सकते हैं, फनी आंसर्स भी दे सकते हैं, लेकिन पहले ना आपको वो 3 वर्ड्स जो हैं क्या होंगे जिससे कि इंडिया को डिस्क्राइब कर सकते हैं वो बताना है बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555।

I totally agree. It can only happen in India. और अगर जब बात आ जाती है कि इंडिया को डिस्क्राइब करना हो तो फैक्ट से डिस्क्राइब करना बहुत ईजी है कि हाँ भाई इतने स्टेट हैं, ये कैपिटल है एंड एवरीथिंग. लेकिन कोई अगर आपसे ये सवाल करे कि वॉट इज इंडिया फील लाइक, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है. क्योंकि अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैं शायद कहूंगी कि इंडिया फील्स लाइक मम्मी की आवाज की खाना खा लिया, या फिर पापा का वो फोन पहुंच गई, या फिर घर का खाना. इंडिया फील्स लाइक बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, स्कूल की छुट्टी. इंडिया फील्स लाइक समर वेकेशन एट नानी का घर. इंडिया फील्स लाइक दिवाली की लाइट्स. इंडिया फील्स लाइक शादी में डीजे के सामने रैंडम डांस, ढिंग चिक ढिंग चिक. इंडिया ऑल्सो फील्स लाइक ए ट्रेन जर्नी. इंडिया फील्स लाइक एयरपोर्ट पर फैमिली को गुड बाय बोलना. और जब आप इंडिया से दूर होते हो ना, तो इंडिया फील्स लाइक होम.

बिल्कुल सही बात है कि हिंदुस्तान तो सिर्फ एक है, इंडिया तो सिर्फ एक है। और इसके पहले कि ये गाना कंटिन्यू करे, वक्त आ गया है हमारे राउंड नंबर 2 ऑफ गिव अवे का। और ये गिव अवे मैं लेके आई हूँ फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर। आपको मिलेगा फ्री ड्राई चिली चिकन, या फिर चिली बेबी कॉर्न, या फिर डैलस का बेस्ट बटर चिकन भी होता है यहाँ पे। लेकिन एक ना आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट पार्टिसिपेट अगर आपने ये सेम गिव अवे जीता है फनीशा किसी भी शो में इन लास्ट वन मंथ। हर किसी को मौका देना चाहिए, सबको जो है पूरा का पूरा चांस मिलना चाहिए। तो बाकी लिसनर्स के लिए जिन्होंने ये नहीं जीता है, मैं सवाल पूछने जा रही हूं, आपको जवाब देना है। और ये गिव अवे बिल्कुल आपका हो सकता है। मैं आपको क्लूज दूंगी, 3 क्लूज होंगे, और आपको बताना है कि ये कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिनकी मैं बात कर रही थी। क्लू नंबर 1 है कि मैं एक फ्रीडम फाइटर था जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल का रास्ता चूज किया। क्लू नंबर 2, मेरा फेमस स्लोगन था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। क्लू नंबर 3, मुझे नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। आई थिंक इट्स एन इजी वन, यू गाइस विल गेट इट। डू कॉल मी एट 972-235-5555।

जी हाँ, एब्सोल्युटली आई लव माई इंडिया टू एंड आई एम स्टिल गेटिंग द कॉल्स. थैंक यू सो मच टू एवरी वन हु पार्टिसिपेटेड इन आर राउंड टू ऑफ गिव अवे. और बहुत सारे कॉल्स हैं, सबके सब ने जो है सही जवाब दिया है. बहुत अच्छा लगा मुझे. और हमने आपसे पूछा था, बेसिकली तीन क्लूज दिए थे और आपको बताना था कि वो कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जिनकी मैं बात कर रही थी. और मुझे कॉल्स तो तब से आने लगे जैसे ही मैंने वो स्लोगन बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज ने फ्रीडम स्ट्रगल को एक कंप्लीटली जो है डिफरेंट डायरेक्शन दे दी थी. वो बहुत रेवोल्यूशनरी हो गए थे और उनमें जो जज्बा था वो पूरे जो है उन्होंने टीम एक आर्मी तैयार की थी आई वुड से, विच इज वाई वी आर फ्री टुडे. और आज की लकी विनर है नेहा जी. कॉन्ग्रेचुलेशन. आपको मिलता है रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से ड्राई चिली चिकन या फिर चिली बेबी कौन या फिर डालस का बेस्ट बटर चिकन खाने का मौका. तो आप जरूर जाएं और इसे एंजॉय करें. और ये बहुत सारी लोकेशंस में अवेलेबल है, रिचर्डसन में है, मैकिनी में है, एलिन में है तो फ्रिस्को में भी, लेकिन ये गिव अवे ना फ्रिस्को लोकेशन के लिए वैलिड नहीं है. तो इसका ख्याल रखें एंड कीप एंजॉयिंग द अमेजिंग साउंड ट्रैक ऑफ इंडिपेंडेंस डे दैट वी आर प्लेइंग गाइस.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
9: Wait, itna sab aur price?
8: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
10: Main hero.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
13: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

सत्यमेव जयते, यानी कि सच की हमेशा जीत होती है, और ये हमारा नेशनल मोटो भी है इंडिया का। तो जी हाँ, इसके बारे में, इस पर्टिकुलर सॉन्ग के बारे में तो बात करना बनता है। आपने ट्यून इन किया है फनेचर रेडियो 104.9 FM, और मैं हूँ आरजे सिमी। अभी मेरा और आपका साथ ना थोड़ा कम टाइम के लिए बचा रह गया है, आधे घंटे के लिए, लेकिन बातें बहुत सारी अभी भी करनी बाकी हैं। और जैसा कि मैं बता रही थी कि अगर आपको ऐसा कुछ दो राहे पे अगर आप खड़े हो, जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग जो है डिफिकल्ट हो रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करे, किसकी साइड ले, तो उसमें सच की साइड लीजिए, मतलब सच की तरफ जो है भागिए, उसकी गाइडेंस लीजिए, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगा। और अगर फाइनेंशियल गाइडेंस की बात हो तो मैं आपको बताती हूँ, माई टाइम इक्विटी का जो है आप रुख कर सकते हैं, विच इज़ लेड बाई CPA सुधीर पाई। ये आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, रियल स्टेट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान में आपकी मदद कर देंगे। आप उनको वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, विच इज़ mytimeequity.com, या फिर आप उनको जो है कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 469-702-1272।

क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब आप इतना अपॉइंटमेंट वगैरह लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, मतलब 5-10 मिनट में आपको जो बोलना होता है वो फटाफट कंप्लीट करना होता है और फिर आपको डायग्नोसिस आपका कंप्लीट हो जाता है, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, लेकिन आपको रहता है कि अरे यार ये तो मैं बताना भूल ही गया, क्योंकि 10 मिनट या 5 मिनट काफ़ी नहीं है, आपको ये हेल्थ को अच्छा खासा टाइम चाहिए, आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जो है अपने डॉक्टर के साथ पूरे के पूरे आधे घंटे देता है ताकि आप उनको अच्छे से अपनी बीमारी और सारे बैकग्राउंड अच्छे से बता सके, ताकि आपको जो है ट्रीटमेंट जल्दी हो पाए, आपका डायग्नोसिस प्रॉपर हो और जो है सारे प्रोएक्टिव रहें आप बेसिकली। तो यहाँ पे ना आप अपनी फैमिली के लिए हेल्थ केयर प्लान वगैरह भी मिलते हैं, एंग्जाइटी केयर भी है, स्कैन भी है फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, और विटामिन्स की अगर आपको डेफिशिएंसी टेस्टिंग करनी है तो वो भी अवेलेबल है एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, और भी बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज हैं। आपको अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो यू कैन कॉल देम एट 214-666-6259।

है, नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है।

जब आप तनिष्क ये ब्रांड का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो डायमंड्स ही आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तनिष्क का जो है सिनोनिम ही डायमंड्स बन चुका है, या फिर डायमंड्स का सिनोनिम तनिष्क बन चुका है। और अभी तनिष्क लेके आए हैं अमेजिंग सा फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। यू कैन इंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड ओवर 18 कैरेट। तो आप ये सीजन जो है अपने टाइमलेस स्पार्कल के साथ सेलिब्रेट कीजिए, ओनली एट तनिष्क लोकेटेड इन फ्रिस्को।

आज का जो डेट है 15th of August, वो हमें एक और चीज याद दिलाता है। हम जिस फ्रीडम को आज नॉर्मल समझते हैं, वो हमेशा से नॉर्मल नहीं थी। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक इंडिपेंडेंट इंडिया का ड्रीम देखा था, उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दूसरों के लिए जो है सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपनी जान तक सैक्रिफाइस की। आज हम उनके सैक्रिफाइसेस को सिर्फ एक हिस्ट्री के चैप्टर की तरह ना देखें, उससे ज़्यादा सीखें बेसिकली। और एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर वो लोग अपनी फ्रीडम के लिए इतना फाइट कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए इतनी फाइट कर सकते हैं, तो उसी फ्रीडम को आज जब हमें वो फ्रीडम मिल चुकी है, तो आज हम उसको कितना वैल्यू कर रहे हैं, उसको क्या यूटिलाइज कर पा रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। शायद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना, दूसरों की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना और अपनी फ्रीडम का मिसयूज ना करना, ये भी अगर हम कर देना तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहलाएंगे और इंडिया को सिर्फ क्रिटिसाइज ना करें, या फिर मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज बिल्कुल क्रिटिसाइज ना करें, उनको कॉन्ट्रीब्यूट करें। ये जरूरी नहीं है कि आज जैसे हम इंडिया में नहीं हैं तो हमें लगता है कि अरे यार हम यहाँ से क्या ही कर लेंगे, हमसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं, बाहर हैं, थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे भी हैं, तो इंडिया जो है ना हमारे अंदर हमेशा रहता है। और अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने रहें, चाहे हम जहाँ भी रहें, तो इतना ही काफ़ी है। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस वॉज आरजे सिमी एंड यू आर लिसनिंग टू फनिश योर रेडियो 104.9 FM। मैं मिलूंगी आपको अगले सैटरडे 6 to 9 PM।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अजी सुनते हो?
3: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
7: Hi this is Salim Merchant from Salim Suleiman and you're listening to me on Fun Asia Radio

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
1: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
0: क्या मतलब?
1: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
0: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
1: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
2: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
5: Floor like never before with Club Phenasia.
6: I'm loving the music.
5: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: Asia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
8: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
9: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
1: Don't miss out on the dance party of the year.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
3: Hi this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio

ताली चलते प्यार सोनिए, ताली चलते प्यार, ताली चलते प्यार सोनिए, ताली चलते प्यार।

0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
2: Hi this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: आई नी तेरा सूट भी, आई नी तेरी साड़ी भी, आई नी तेरा लहंगा, तेरी ड्रेस ते तेरा कोका।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

Bringing South Asia closer, more closer. Phonesia 104.9 FM.

0: अब क्या?
1: Claustrophobia. व्हाइट हाउस की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया, प्लीज चेक.
2: अच्छा, कौन सा? वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर, कोर्ट में बात कीजिए.
2: अशरफ, सिक्योर लाइन है, प्लीज डोंट इरिटेट मी, नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा. हाँ, फाइनल चेक्स एवरीवन. शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है. कम ऑन, गेट रेडी.

0: मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनेशिया पे।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कहीं पे है जिंगल की आवाजें,
1: कहीं पे वो नलके की टप टप है।
0: कहीं पे वो खाली सी खिड़की है,
1: कहीं वो अंधेरी सी चिमनी है,
0: कहीं हिलते पेड़ों का जत्था है,
1: कहीं कुछ

0: सब कुछ सीज कर लो।
1: एक टीम को कोऑपरेटिव बैंक भेजो और वो लॉकर्स भी सील कर लो। अभी क्या रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज राइस मिल के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरियां हैं। उन डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो।
2: Tracks that put you on the right track.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Term restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
8: ओह हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं, फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर। विजिट श्रीकृष्णा.com।
10: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
11: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
12: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभाल लेंगे।
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह।

0: करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: बेटा 95% आए?
8: हाँ मम्मी।
7: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
9: मेरा?
7: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
9: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com। कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: इस रक्षाबंधन चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
2: चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। Please play responsibly.
11: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

ईश्वर कहते हैं उदास ना हो मैं तेरे साथ हूँ। ईश्वर कहते हैं उदास ना हो मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बस तेरा विश्वास हूँ। संडे गपशप के तमाम श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। अ वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ संडे गपशप ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एकरूप, आपका स्वागत करती हूं। अ वार्म वेलकम। आज एक और नया दिन, नया शो और नई नई बातें, अच्छी अच्छी बातें आप सबके साथ यहां पर करूंगी 104.9 FM फन एशिया रेडियो की फ्रिक्वेंसी। और यहाँ का फ़ोन नंबर आप जानते हैं 9722355555। बस करना क्या है, फ़ोन उठाना है और नंबर डायल करना है एंड मुझे बता देना है कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करोगे। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये शो आता है और इसको लेकर आती हूँ मैं, यानी कि आरजे एक रूप। आई होप कि आपका हफ्ता अच्छा रहा हो। फटाफट मंडे आता है और बहुत जल्दी ही संडे भी आ जाता है और यहाँ पर संडे की शुरुआत फिर मेरी तो इसी शो के साथ होती है। संडे का दिन जो है इसी शो के साथ शुरू होता है, आपके साथ के साथ शुरू होता है। सो 9722355555 बस कॉल करके बता दीजिए क्या है आपका हालचाल एंड कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप। अच्छे अच्छे सॉन्ग्स वैसे यहाँ पर अपने आप ही लाइंड अप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। शो का जो आगाज़ अब मैं करूँगी वो तो ऑब्वियसली सॉन्ग ऑफ माय चॉइस एंड देन द फोन लाइंस आर ओपन। 7:30 की ब्रेक आएगी, वो 15 मिनट तो हैं वैसे अभी। सॉन्ग्स मैं चला रही हूँ, उसके बाद 10 o'clock तक मैं यहीं हूँ स्टूडियो में as you all know, so just give me a call and let me know what you would like to listen to. A very good morning and a welcome to all the listeners of Sunday Gup Shup, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

राजेंद्र सिंह बेदी एक बहुत ही पॉपुलर जाने माने उर्दू नावलिस्ट थे, और नरेंद्र बेदी भी आगे चलकर, वो उनके बेटे राजेंद्र बेदी के बेटे नरेंद्र बेदी, उन्होंने फिर अपने फादर की लिखी हुई कुछ नॉवेल्स को जो है बड़े पर्दे पर उतारा फिल्मों के तौर पर. एंड मेरे सनम वाज वन ऑफ द फिल्म्स दैट वाज ब्रॉट टू द बिग स्क्रीन्स बाय नरेंद्र बेदी. वैसे इस फिल्म को डायरेक्ट तो किया था अमर कुमार ने, लेकिन ये जो स्टोरी थी जो लिखी थी, ये नरेंद्र बेदी एंड राजेंद्र सिंह बेदी की तरफ से थी. और इसमें आशा पारेख, जो कि गोल्डन गर्ल मानी जाती थी, इनफैक्ट जब इन्होंने फर्स्ट एवर ऑडिशन जो दिया था फिल्मों में आने के लिए, तो उस टाइम पर एक किसी फिल्म मेकर ने बोल दिया था कि शी इज़ नॉट द मूवी मटेरियल, स्टार मटेरियल नहीं है इनमें क्वालिटीज़, एंड इनको रिजेक्ट कर दिया था. बहुत जल्दी ही इस एपिसोड के बाद, इस जो ये जो उन्होंने एक्सपीरियंस की थी रिजेक्शन, उसके बाद एक फिल्म उनको फिर भी साइन उनके उनके पास आई और उन्होंने साइन किया, और देन वो ओवर नाइट सक्सेस बन गई. एंड दैट फिल्म वाज दिल दे के देखो, जो आई थी 1959 में, ऑपोजिट शमी कपूर. सो जो टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं से उभर कर आ ही जाता है, बस एक थोड़ा सा छोटा सा चांस मिलने की देर होती है, और फिर जब उड़ान भरने का टाइम आता है या मौका मिलता है, तो फिर कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती. सो टैलेंट ऐसा होता है, कहीं से भी निकल कर आ जाता है. एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद आशा पारेख जी. शी वॉज कॉल्ड द गोल्डन गर्ल. 60s एंड 70s में बहुत ही पॉपुलर हुई थी ये. एंड शी बिकेम फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ इंडियाज़ सेंसर बोर्ड. तो ये बहुत सारे उनको जो है उनके करियर में अकॉम्प्लिशमेंट्स रहे. इनफैक्ट इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये अवार्ड होता है, तो नेशनली रिकग्नाइज्ड पद्मश्री इनको 1992 में, बहुत जल्दी ही पहले ही अपने करियर में मिल गया था. एंड देन 2020 में, इन रीसेंट टाइम्स, अभी इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला. सो दिस वाज आशा पारेख जी, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. अब जो अगला सॉन्ग है वो फरमाइशी सॉन्ग है. बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उन पर ये सॉन्ग फिल्माया गया है. ऑफ कोर्स दे वर द लीडिंग पेयर ऑफ दिस फिल्म, विच इज़ आ गले लग जा.

आज की डेट अगस्त 16, और इसका ये मतलब है कि वी आर इन द मिडल ऑफ द मंथ. एग्जैक्टली जो है थर्ड संडे है आज, और इसके बाद दो और संडेज हैं, एंड देन फिर हम लोग 9th month में आ जाएंगे. वो यस्टरडे वाज अगस्त 15, इंडिया का 79th इंडिपेंडेंस डे, एंड आप सबको उस के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. 79 years अगो द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, और उसके बाद तो खैर हर साल इतनी धूमधाम से ये वाला जो दिवस है वो मनाया जाता है. एंड स्कूल्स नेशनल हॉलिडे, फेडरल हॉलिडे, सब कुछ होता है इंडिया में, और ऑफ कोर्स अमेरिका तक जो है इसका पॉजिटिव ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है. जस्ट लास्ट नाइट INT सेलिब्रेटेड इट्स इंडियाज इंडिपेंडेंस डे इन द फॉर्म ऑफ आनंद बाजार. कमेरिका सेंटर में हुआ था ये इवेंट, एंड बहुत अच्छा टर्नआउट जो है लोगों का बहुत अच्छा था. इट वॉज अ ग्रेट इवेंट, एंड सो आप सबको थैंक यू, एंड ऑल्सो अगेन वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. घड़ी में जो है 7:36 हो रहे हैं, और इसका ये मतलब है कि शो के दौरान चलते चलते जो है फर्स्ट ब्रेक अभी ख़त्म हुई है, एंड हम वापस आए हैं. 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. प्लीज़ कीप द कॉल्स कमिंग इन. यही जो है स्टूडियो लाइंस, फ़ोन नंबर यही है. सो आप बस इसको अपनी फेवरेट लिस्ट में डाल लीजिए, एंड फेवरेट डायल स्पीड डायल में, और ताकि फिर आप मुझे बता दें कि आप कौन सा सॉन्ग सुनेंगे. वी आर जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम द फर्स्ट ब्रेक ऑफ द शो, और ये वाला सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है. फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर.

This part of my show is brought to you by AG Fintechs. They are the fastest growing tax firms in the United States. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and they get you ready for the future. 469-942-9888, or you can visit them at agfintechs.com. AG Fintechs जो है हमारे शो को मेरे शो को स्पॉन्सर करते हैं. आप उनके साथ ज़रूर जो है अपना कॉन्टैक्ट बनाएं 469-942-9888, या फिर आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, विच इज़ agfintechs.com. थैंक यू सो मच. आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. आपके जो है रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स, मैं यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको लाइन अप कर रही हूँ. ये वाला सॉन्ग है, वेल इस सॉन्ग से पहले मैंने मीना कुमारी जी की फिल्म द लेक मंदिर 1963 का सॉन्ग प्ले किया था, देन दिस वन केम इन बिटवीन. और जो अब अगला जो रिक्वेस्टेड सॉन्ग है वो भी मीना कुमारी जी की ही फिल्म का है, द फिल्म दैट टुक फॉर एवर टू मेक. और जो है वो जब प्रोडक्ट बना तो इतना एजलेस टाइमलेस क्लासिक प्रोडक्ट बना एज फार एज म्यूजिक वॉज कंसर्न, द स्टोरी वॉज कंसर्न, एवरीथिंग, स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ, म्यूजिक, लिरिक्स, सब कुछ उस फिल्म का इतना कमाल का. थैंक यू हमारी लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की. फिल्म का नाम पाकीज़ा.

0: More than a decade was the time that it took to make this film into what we see it today. उनका जो है उन इतना टाइम लग गया बिकॉज प्रोफेशनल इश्यूज तो थे ही, साथ में पर्सनल इश्यूज भी इन्वॉल्व हो गए. और फिर करते करते देन जो है इस फिल्म की जर्नी जो है बहुत ज़्यादा लंबी रही. जहाँ जब शुरू हुई थी बननी, ख़त्म हुई फ्रॉम इट टू इट्स रिलीज. और ये ऐसी मैजिकल मूवी बनी कि इसको जब भी देख लो, जब भी इस फिल्म के सॉन्ग सुन लो, तो वो जो है जद्दोजहद मोर देन अ डेकेड, अबाउट 14 to 16 years की, वो सब फिर एज एन ऑडियंस हम ऑफ कोर्स भूल ही जाते हैं. सो ये वाला सॉन्ग हमारी लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. और ये जो शो है ओमर अखवाजा अटॉर्नी जो है लोकल यहाँ पर, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं संडे गपशप इस शो को. और जो है ओमर ख्वाजा एक जाने माने अटॉर्नी हैं, पर्सनल इंजरी के अटॉर्नी हैं. एंड आपका जो केस होगा और उससे रिलेटेड जो कॉम्पेंसेशन जो आप डिज़र्व करते हैं, वो मेक श्योर करेंगे कि वो आपको मिले. सो आप फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं ओमर ख्वाजा के साथ. फ़ोन नंबर है 4693005046, या फिर आप उनकी वेबसाइट को विज़िट करें, attorneyomar.com. If dealing with insurance companies can be very stressful and a big hassle, therefore you need an attorney that will make sure that you are well compensated. And the good thing is that you don't pay him until you get compensated completely. So this is Omar Khwaja, 4693005046. Visit his website, which is attorneyomar.com.
1: अभी न जाओ छोड़ कर.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte ek door se shuru hote hain aur ek anmol nishani ke saath hamesha ke liye amar ho jate hain. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
7: ये तारा वो तारा हर तारा।
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
9: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
10: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की best filter coffee, family dinners to catering services with Jain friendly options.
9: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
13: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
9: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi.

स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच आपके फ़ोन कॉल्स का, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का और इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग की जो विशेज़ हैं आपकी, बेस्ट विशेज़ मुझे मिल जाती हैं और आपको भी मेरी बेस्ट विशेज़ शुभकामनाएं एंड आपकी तरफ से जो है अगस्त 15th की शुभकामनाएं भी आ रही हैं मेरे लिए। और इनफैक्ट एक हमारे लिसनर हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा बहुत पेट्रियाटिक सॉन्ग तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि वो जो है देश की प्रेज करता हुआ, कॉम्प्लीमेंट्स देता हुआ वो एक सॉन्ग है जो फिल्म सिकंदर आज़म में का है और उस इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। सो मैं अभी जो मैं ब्रेक के बाद अब रिज्यूम कर रही हूँ तो मैं उसी सॉन्ग से शुरू करूँगी एंड देन आई हैव अ फ्यू रिक्वेस्ट दैट आई विल continue to play all throughout. So just stay tuned into aapke song ka number zarur aata hai. I try not to skip your song because itne pyar se aap call karte hain, itna time nikalte hain aur fir is show ko sunte hain pura time. So thank you so much and I appreciate and I respect your time. As I mentioned ki kal, of course we all know that yesterday August 15th was India's Independence Day. It is celebrated every year on August 15th और जो है उसी से related ये वाला song, जहाँ डाल डाल पर पे सोने की चिड़िया, सिकंदर आजम फिल्म का नाम, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

साथू दे फांदे वाह फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस आलम में तो साहब बन गया।

रंग तेरे, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हमसा ना बदलेगा, हमसा ना बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गर

लंदन। ये बैक टू बैक दो सॉन्ग्स जो हमारे एक लिसनर हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं एंड ही फॉर सम रीज़न लाइक्स टू रिक्वेस्ट फॉर टू सॉन्ग्स। हमारी एक लिसनर हैं जिन्होंने ये वाला सॉन्ग सुनना चाहा है और ये मैं अभी प्ले करने वाली हूँ। एंड इनका नाम आई थिंक उर्वशी उन्होंने बताया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उर्वशी जी, आई होप दैट यू आर स्टिल ट्यून्ड इन बिकॉज आपने मुझे अबाउट 7:59 पे या 8 o'clock के अराउंड कॉल किया था। सो इट्स नॉट टू लॉन्ग, इट्स ओनली 8:18 राइट नाउ इन द क्लॉक्स। तो ये लीजिए आपके लिए बहुत ही अच्छा सा स्वीट सा सॉन्ग।

मोहम्मद रफ़ी साहब एंड आशा भोसले जी की आवाज़ें, इतना प्यारा सॉन्ग। और जो है हमारी लिसनर उर्वशी जी ने इस सॉन्ग की फरमाइश की, दिस सॉन्ग इज़ सो ब्यूटीफुल। कितनी बार मेरे शो पर प्ले होता है और उतनी बार ही बहुत अच्छा लगता है। अब बिफोर वॉल, अभी तो काफ़ी टाइम है, 8 मिनट्स हैं एटलीस्ट ब्रेक पर जाने से। एक और सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, और ये वाला मुकेश साहब की आवाज़ में है एंड लता जी की। फिल्म का नाम है उजाला, ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग है, एंड मैंने शायद सुना है, शायद नहीं सुना, बट आई एम श्योर अच्छा ही होगा। मोहम्मद बोल मुकेश साहब की आवाज़ है तो अच्छा होगा, लता जी हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। सो हियर यू गो। दुनिया वालों से दूर

0: कर वो जा रहे हैं देखो।
1: मुझे ना इस शो को करने की ऑफ कोर्स खुशी तो बहुत होती है, बिकॉज आपके इतने अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, इतने गोल्डन एरा के और रीसेंट टाइम्स कंटेम्प्रेरी रेट्रो सब जो है अच्छे अच्छे सॉन्ग्स यहाँ पर आप ही की रिक्वेस्ट के कम्प्लीटली। ओनली द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई प्लेड वाज द वन दैट आई प्लेड फ्रॉम माई सेल्फ फ्रॉम माई ओन डिज़ायर, लेकिन उसके बाद तो सभी आपकी ही चॉइस के सॉन्ग्स हैं और ये तो ऑफ कोर्स खुशी है ही। दूसरी जो खुशी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर वो जब आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं ना, तो डिफरेंट जगह डिफरेंट स्टेट्स के इंडिया में यू नो डिफरेंट एक्सेंट होता है, डिफरेंट लैंग्वेज हो जाती है, तौर तरीका फ़र्क है गुड विशेस देने का या प्यार से बात करने का। तो जब कोई लिसनर ऐसे कॉल करते हैं कि नाम बता दिया गाने का मूवी का, ये मैं सुनना चाहती हूँ या सुनना चाहता हूँ, एंड देन उसके बाद फ़ोन रखने से पहले और आप ठीक हैं, हाँ जी मैं ठीक हूँ, फिर मैं उनको पूछती हूँ आप ठीक हो, हाँ जी आप भी ठीक हैं, तो वो फिर अपने एक्सेंट बोलते हैं सब बराबर है। तो वो अभी मुझे एक किसी कॉलर ने पूछा कि सब बराबर बराबर चल रही है ज़िंदगी, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ज़िंदगी बराबर इन बैलेंस चल रही है। सो बस आपके साथ बात करती हूँ तो थोड़ा ऐसे अच्छे मोमेंट्स भी हो जाते हैं। शुक्रिया आप सबका, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स। ये वाला सॉन्ग जी हाँ, दुनिया वालों से दूर सुना हुआ है, बट इट जस्ट डिडंट क्लिक टू मी कि यही वाला सॉन्ग है, और इसमें माला सिन्हा एंड शमी कपूर थे, उजाला था इस फिल्म का नाम। अगला सॉन्ग ये वाला प्ले कर देती हूँ एंड देन इट विल टेक अस टू इन टू द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एट 8:30। दिस इज आरजे एक ग्रुप, आई विल बी हियर अंटिल 10 o'clock। ज्योति कलश

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुककीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
5: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: भूख लगी
12: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
14: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
15: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game.

Welcome back. This is RJ Akrup. I welcome you all once again, Sunday Gupshup, 104.9 FM, Fanesha Radio. 972-235-5555 is the number to the studio. ये जो number है, वैसे तो cars के screen पर भी आना चाहिए. Otherwise, ये number इतना popular number है हमारे Dallas शहर का कि आपको वैसे ही by heart ये number याद होना चाहिए. लेकिन हमारा काम है repeat करना, remind करवाना और आपको इनकरेज करना कि आप यहाँ पर कॉल करें. मिडल ऑफ द मंथ अगस्त 16th है आज एंड मैं वैसे ही आई वाज जस्ट चेकिंग आउट और मैं देख रही थी कि अराउंड दिस टाइम अप टिल द एंड ऑफ द मंथ कितने सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बर्थडेज आते हैं एंड आज तो वेरी स्पेशली जिनका आता है दो बहुत वेल नोन एंड पॉपुलर एक्टर्स हैं एंड दोनों ही इस्टेब्लिश्ड खानदान से आए हैं. एक तो सैफ अली खान जिनका आज है जन्मदिन अगस्त 16th को और 1970 को उनका जन्म हुआ था एंड पटौदी नवाब पटौदी के बेटे शर्मिला जी के बेटे वेल नोन फैमिली एंड दे गो बैक अ लॉट. शर्मिला जी तो वैसे भी रविंद्रनाथ टैगोर की डिसेंडेंट हैं एंड उनके फादर नवाब पटौदी सैफ के फादर वो भी इतने वेल नोन रॉयल फैमिली एज वेल एज फेमस क्रिकेटर फॉर द टीम. तो दोनों ही इतने अच्छे एस्टैब्लिश्ड अपने अपने करियर में एंड सैफ ने अपना अपने लिए भी इतना नाम बनाया हुआ है. एंड द अदर एक्टर ऑल्सो बिलोंग्स टू अ प्रोमिनेंट फैमिली नॉट इन इंडिया बट इन नेपाल. मनीषा कोइराला जिनका आज है जन्मदिन एंड शी वॉज बॉर्न ऑल्सो टुडे अगस्त 16th एंड इन द सेम ईयर 1970. सो ये दोनों सेम डे सेम ईयर पर लेकिन फार अपार्ट एक इंडिया में और एक नेपाल में. एंड मनीषा कोइराला भी काफ़ी प्रोमिनेंट रॉयल एज वेल एज पोलिटिकल फैमिली को बिलोंग करती हैं एंड व्हेन शी केम इनटू द मूवी इंडस्ट्री तो उन्होंने फर्स्ट मूवी से ही अपना जो है जादू उनका छा गया था. सो जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज टू एक्टर्स इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग एपिसोड. इतनी सारी फिल्में इन्होंने की हैं. सोनम बाजवा का भी आज ही है जन्मदिन. सोनम बाजवा जो कि पंजाबी मूवी इंडस्ट्री की वेल नोन एक्ट्रेस हैं एंड देन हिंदी मूवीज़ में भी उन्होंने काम किया है. इनफैक्ट शी स्टार्टेड हर करियर एज एन एयर होस्टेस एंड देन वहाँ से फिर ये मूवी इंडस्ट्री में मॉडलिंग एंड मूवी इंडस्ट्री में आ गई. एक इंडिया के डायरेक्टर हैं सपोजिटली जिनको मिला हुआ है आई गेस टाइटल कह सकते हैं अनऑफिशियल एंड ऑफिशियल ऑल्सो मे बी कि उन्होंने ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मेकिंग द मोस्ट नंबर ऑफ हिंदी फिल्म्स. उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है फिल्मों की डायरेक्शन की है और उनका जन्मदिन भी आज ही है अगस्त 16th एंड हिज नेम इज़ डेविड धवन. आई थिंक इस क्वेश्चन पे तो मैंने कुछ हफ्ते पहले मे बी अ मंथ और टू अगो एक मैंने गिव अवे भी दिया था और उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा था दैट यू हैव गॉट अ नेम द डायरेक्टर दैट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन हिज करियर. सो डेविड धवन ने सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्मों की डायरेक्शन की है और इनका सबसे ज़्यादा काम भी गोविंदा के साथ है. 90s, 80s, late 90s, early 2000s सो बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई हैं. सो हैप्पी बर्थडे टू डेविड धवन ऑल्सो टुडे अगस्त 16th इज हिज बर्थडे. सो सोनम बाजवा टुडे अगस्त 16th, मनीषा कोइराला टुडे अगस्त 16th एज वेल एज सैफ अली खान ऑल्सो ऑन अगस्त 16th. सो ये तो कुछ ही नाम मैंने बोले हैं. आई एम श्योर देर आर अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑफ नॉट इफ नॉट सेलिब्रिटीज दैट वी नो बट सम हाउ पीपल दैट आर रिलेटेड टू द इंडस्ट्री. आई एम श्योर और भी होंगे जिनका आज जन्मदिन होता है. अगस्त जनरली इज़ अ वेरी पॉपुलर मंथ फॉर बर्थडेज. आई नो सो मेनी पीपल दैट आर बॉर्न इन अगस्त. I know myself. मैं भी अगस्त की ही बॉर्न हूँ. सो एनी वे दिस सीम्स टू बी अ पॉपुलर मंथ. अगस्त सेप्टेम्बर आई गेस अराउंड डिसम्बर ऑल्सो इज़ पॉपुलर एज फार एज बर्थडेज गो. सो बस यूं ही ये बर्थडेज आते रहें और यूं ही हम इन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में बातें करते रहें. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. कीप द कॉल्स कमिंग इन.
अगला जो सॉन्ग है हमारे लिसनर है वो कहते हैं कि वो अभी आई थिंक कल परसों अपनी ग्रैंड डॉटर को बाइक करवा रहे थे, तो जैसे जैसे वो उसको पुश कर रहे थे उनके माइंड में ये वाला गाना आ रहा था.

ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडडॉटर का या ग्रैंडकिड्स का तो ऐसा रिश्ता होता है जो कभी टूटता ही नहीं, और वही इस सॉन्ग के लिरिक्स भी हैं, मैंने कसम ली तूने कसम ली नहीं होंगे जुदा। जी हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंडकिड्स कैसे जुदा हो सकते हैं, एंड व्हाई आई से दैट बिकॉज ये हमारे लिसनर जिन्होंने कॉल इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, वो इसीलिए उनको ये सॉन्ग याद आया बिकॉज समहाउ जब वो अपनी ग्रैंडडॉटर को बाइकिंग करवा रहे थे तो जैसे जैसे उसका बाइक वो पुश कर रहे थे तो उनको ये वाला सॉन्ग याद आ रहा था, एंड देन ही सेड कि आप ये वाला सॉन्ग सुनवा ही दीजिए। सो इसीलिए मैंने ये सॉन्ग प्ले किया आप ही की रिक्वेस्ट पर। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। शाहीन कहती हैं कि ये वाला सॉन्ग सुनवा दीजिए।

ये गाने हैं ही इतने मैजिकल, इतना इनमें मैग्नेटिक पुल है कि जो नहीं भी कॉल करते हैं उनके भी फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं जब ऐसे सॉन्ग्स प्ले होते हैं. सो शुक्रिया, थैंक यू. नेक्स्ट सॉन्ग लगाने से पहले मैं आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बता देती हूँ कि इनके पास इनफ सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट टाइम ये देते हैं अपनी अपॉइंटमेंट पर ताकि वो आपको समझ सकें और आप उनको समझ सको. द अपॉइंटमेंट्स आर स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स बिकॉज ट्रूली दे फील दैट अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम एंड वन ऑन वन कम्प्लीट डिवोटेड अटेंशन देते हैं 30 मिनट्स. तो जब आप स्केड्यूल करें अपनी अपॉइंटमेंट तो आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर ये पता होगा इन द बैक ऑफ योर माइंड कि जब आप अपने पीसीपी को मिलेंगे इस वाली प्रैक्टिस पर, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पर, तो आपको वो पूरा पूरा टाइम देंगे. बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. फॉर यू, योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी, Passion Health Primary Care exists, and 30 minutes is all that it takes to do your annual physical. And they also care for anxiety care, fibro scan for alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, and so many other tests that may be needed according to your age or your genetics or your concerns. Schedule your appointment today to 214-666-6259 to book your appointment with Passion Health Primary Care, because your health is their passion. प्रद्योत, उन्होंने मुझे अपना नाम ये बताया एंड वी हैड अ फ्यू मिनट्स डिस्कसिंग हिज नेम. उसका मीनिंग होता है सन. सो प्रद्योत, ये आपके लिए एंड ऑफकोर्स यू हैव अ वेरी नाइस नेम एंड ये लीजिए, ये आपके लिए सॉन्ग.

सुपरहिट फिल्म मेरे जीवन साथी 1972, जब राजेश खन्ना साहब का दौर अभी भी बहुत हाई स्पीड पर ही था. किशोर कुमार किशोरदा ने ये सॉन्ग गाया, आर डी बर्मन का म्यूजिक, और लाइक आई सेड फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी. अगला जो सॉन्ग है वो थोड़ा लंबा है, बट द गुड थिंग इज कि ब्रेक के लिए अभी 5 मिनट्स हैं, सो वी आर गोइंग टू लिसन टू दिस सॉन्ग अंटिल इट टेक्स अस इनटू द नेक्स्ट ब्रेक. संगीता जी, ये आपके लिए, आपकी तरफ से.

टाइम हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब मैं रिज्यूम करूँगी तो फिर मेरे पास गिव अवे है सैन इडली रेस्टोरेंट का, एंड आई विल बी चूजिंग टू विनर्स। तो दो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, बट अगेन आई विल टॉक अबाउट दिस व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, द गिव अवे।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: वेट, इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो।
9: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
8: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
4: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। This weekend, let the flavor lounge do the cooking. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
6: Ek aur laddu le lo.
10: Thodi aur biryani.
6: Are America jaake thodi milega.
11: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
12: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 214-869-2668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।
13: या दिस इज शक्ति कपूर एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू मी ऑन द फन एशिया रेडियो।

गिव अवे का क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी अभी, एंड आपको मुझे बताना है, वेल फ़ोन नंबर मैं आपको बता देती हूँ पहले, 972-235-5555, और आपको मुझे बताना है कि वो आई टॉक्ड अबाउट सेवरल सेलिब्रिटीज़ हु सेलिब्रेट देयर बर्थडेज टुडे, उनमें से जो दो जिनके बारे में मैंने स्पेशली मेंशन किया था, सैफ अली खान एंड मनीषा कोइराला, इन दोनों के जन्मदिन आज ही हैं, एंड कोइंसिडेंटली दे वर बॉर्न इन द सेम ईयर एज वेल, 1970. तो आपको मुझे बताना है कि इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, इवन टुडे दे आर सो एक्टिव इन देयर प्रोफेशनल लाइव्स. नाम बताना है उस मूवी का जिसमें इन दोनों ने इकट्ठे काम किया है, सैफ अली खान एंड मनीषा कोइराला, विच वॉज द वन मूवी दैट ब्रॉट देम टुगेदर ऑन स्क्रीन. हैप्पी बर्थडे टू दीज टू वंडरफुल एक्टर्स, मनीषा कोइराला एंड सैफ अली खान. टेल मी द नेम द फिल्म इन विच दे वर्क्ड टुगेदर.

0: Hello.
1: Good morning. How are you? You're live on air. Before you tell me the answer, पहले आप अपना नाम बताइए.
0: या माय नेम इज शशि बाला. गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग शशि बाला, क्या बात है.
0: या
1: आपको तो डेफिनेटली यू आर कनेक्टेड विद बॉलीवुड. आपका तो मधुबाला से नाम मैच
0: करेक्ट.
1: करता
0: हाँ
1: है, सो यू आर डेस्टिन्ड टू बी क्लोज टू बॉलीवुड.
0: या आई लव बॉलीवुड. या
1: जी, तो
0: या
1: बताइए. सो यू आर टेलिंग मी द आंसर फॉर द गिव अवे.
0: या इट इज कच्चे धागे.
1: So were they opposite of each other?
0: या एक्चुअली आई हैवंट वॉच द मूवी, लाइक पूरा
1: बट
0: नहीं
1: आपने
0: देखा है.
1: आपने मुझे सही आंसर दिया, बिल्कुल ठीक आंसर दिया. सो
0: हाँ
1: व्हाट इज योर नेम? टेल मी
0: या
1: योर,
0: शशि
1: टेल
0: बाला
1: अस
0: है.
1: योर नेम, कंप्लीट नेम. शशि
0: हाँ
1: बाला
0: शशि बाला गुप्ता.
1: गुप्ता, ठीक है. सो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. दे डिड कम टुगेदर इन कच्चे धागे. तो अब क्या है शशि बाला, आई एम गोना हैव टू टेल यू टू कॉल मी बैक बिकॉज आई हैव टू फाइंड वन मोर विनर. मुझे दो विनर्स चाहिए, ठीक है. सो यू आर वन ऑफ द विनर्स. लेट मी स्पीक टू द अदर पर्सन एंड लेट्स सी इफ दे गिव मी द राइट आंसर. सो
0: श्योर.
1: देन स्टे.
0: थैंक्स चला.
1: या श्योर. अरे आपने तो फोन ही रख दिया. सो अभी जो है एक विनर तो मुझे मिल गए हैं. लेट मी सी ये क्या कहते हैं. गुड मॉर्निंग, यू आर लाइव ऑन एयर. सो आप, हाँ जी, आप मुझे गिव अवे का जवाब देने के लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है. सो आप पहले अपना नाम बताइए, फुल नेम.
0: कीर्ति पोल.
1: इज दैट योर नेम?
0: कीर्ति.
1: व्हाट इज इट? कीर्ति. अच्छा, ओके, ठीक है. सो नाउ टेल मी द नेम द फिल्म दैट ब्रॉट मनीषा कोराला एंड सैफ अली खान टुगेदर.
0: कच्चे
1: कच्चे धागे. उसमें वर दे ऑपोजिट टू ईच अदर या कैसे थी उनकी स्टार कास्ट? हैव यू वॉच द मूवी?
0: आई वॉच दैट मूवी बट आई डोंट रिमेम्बर कंप्लीटली. बट आई
1: हाँ
0: थिंक अजय देवगन एंड मनीषा कोराला वॉज अपोजिट.
1: हाँ वो दोनों थे. या एंड सैफ अली खान वॉज ऑपोजिट नम्रता शिरोडकर.
0: करेक्ट. या
1: जी,
0: करेक्ट.
1: ठीक है. सो आपने, आपको याद है, ठीक है. सो आप से आप जस्ट स्टे हियर, आई एम गोना स्पीक टू यू ऑफ हियर एंड आई विल टेक योर डिटेल्स एंड देन आई विल लेट यू नो हाउ यू कैन क्लेम योर गिव अवे फॉर टुडे. तो कीर्ति है आपका नाम, राइट? ठीक है, चलिए. सो जस्ट स्टे हियर, आई एम गोना रिज्यूम द सॉन्ग एंड आई टॉक टू यू ऑफ हियर. ओके, ठीक है. ये हम गाना रिज्यूम करते हैं, देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू अनाउंस फॉर शशि बालाजी टू कॉल मी बैक एंड सो आई कैन गिव हर द डिटेल्स ऑल्सो ऑफ हाउ शी कैन गेट हर गिव अवे फॉर टुडे.

So giveaway था है सैन इडली रेस्टोरेंट विच इज़ लोकेटेड ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 121 एंड कस्टर. तो वहाँ पर ये रेस्टोरेंट लोकेटेड है, सैन इडली है इस रेस्टोरेंट का नाम. और गिवअवे है डोसा ऑफ योर चॉइस, एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफ़ी. आप ये जीतते हैं. हमारे जो दोनों विनर्स हैं, शशि बाला गुप्ता एंड कीर्ति पोल, ये दो विनर्स हैं हमारे आज के. एंड इन दोनों ने जीता है वन एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस अ फिल्टर कॉफ़ी. सो बोथ ऑफ यू गेट दिस गिव अवे. एंड दिस रेस्टोरेंट लाइक आई सेड लोकेटेड ऑन 121 इन कस्टर. और यहाँ पर 100% प्योर वेजिटेरियन फूड मिलता है, वेरी ऑथेंटिक क्रिस्पी डोसाज, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स. और जो है फिल्टर कॉफ़ी तो इनकी सुना है कि बहुत पॉपुलर है. सो यू गेट टू विजिट दिस रेस्टोरेंट, नॉट ओनली जस्ट विजिट बट यू शशि बाला एंड कीर्ति, आप अपने अपने फैमिली के साथ जाइए और वहाँ जाकर ये आप अपना गिव अवे इन्जॉय कीजिए. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन, अ फ्रेंडली ऑप्शन. दिस इज़ अ सैन इडली रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. सो कंग्रेचुलेशंस टू शशि बाला एंड कंग्रेचुलेशंस टू कीर्ति पोल. क्वेश्चन मेरा यही था कि मनीषा कोयराला एंड सैफ अली खान, जिनका दोनों का आज बर्थडे है, इन दोनों की कौन सी फिल्म थी जिसमें इकट्ठे ये नज़र आए थे. वेल आई डोंट नो इफ दे शेयर्ड द स्क्रीन स्पेस, मैंने ये फिल्म नहीं देखी बट इस फिल्म के सॉन्ग्स मैंने सुने हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं. कच्चे धागे है फिल्म का नाम. इसमें सुखविंदर सिंह का ये वाला जो सॉन्ग है मैंने लाइनअप किया हुआ है, अभी मैं प्ले करूँगी. नुसरत फ़तेह अली खान साहब का भी सॉन्ग है इसमें, हंसराज हंस जी ने भी गाया है. एंड ऑफ कोर्स लता जी, अलका याग्निक, कुमार सानू एट्सेट्रा, सभी ये अच्छे अच्छे सिंगर्स जो हैं इस फिल्म के, इन्होंने गीत गाए हैं. कच्चे धागे इज़ अ फिल्म दैट ब्रॉट मनीषा कोराला एंड सैफ अली खान, द ओनली मूवी दैट दे डिड टुगेदर. वेल एटलीस्ट स्टार कास्ट में तो हैं टुगेदर. आई डोंट नो अगर स्क्रीन स्पेस शेयर किया है या नहीं. मनीषा इज़ ऑपोजिट अजय देवगन एंड सैफ इज़ ऑपोजिट नम्रता शिरोडकर. बट दिस इज़ द सॉन्ग फ्रॉम दैट फिल्म कॉल्ड कच्चे धागे. सुखविंदर सिंह.

एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल ही गई, शशि बाला एंड हमारे जो दूसरे विनर हैं कीर्ति, आप विद इन 7 days यू हैव टू जस्ट शो अप एट द रेस्टोरेंट, उनके पास आपका नाम चला जाएगा एंड एटलीस्ट स्टार्टिंग टुमारो दिस वीक आप जाएं वहाँ पर एंड लेट देम नो दैट यू वन दिस गिव अवे एंड दे वुड ऑलरेडी हैव योर नेम ऑन देयर फाइल्स, तो उनको पता होगा कि आपने आना है एंड देन दे विल आई गेस ऑनर द गिव अवे रिवॉर्ड दैट यू विन here today. So Shashi Bala and Kirti, just show up at the restaurant anytime this week starting tomorrow.

सुखविंदर सिंह की आवाज़ में हम ये सॉन्ग सुन रहे थे. फिल्म का नाम कच्चे धागे एंड अजय देवगन एंड मनीषा कोइराला पर फिल्माया गया ये वाला सॉन्ग. बट इस फिल्म में सैफ अली खान एंड नम्रता शिरोडकर भी थे. दिस फिल्म अच्छी चल गई थी कमर्शली, लेकिन अगर क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ें देखें तो फिर उनको तो ये फिल्म में लगा कि जैसे मनीषा कोइराला का जो टैलेंट था वो बिल्कुल वेस्ट हो गया. शी इज़ सच वंडरफुल एक्ट्रेस. अभी भी हम इनको देखते हैं बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर. शी डज़ कम इन द OTTs इज़ वेल. सो शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस. वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर. मनीषा कोइराला हैप्पी बर्थडे. सैफ अली खान हैप्पी बर्थडे. ये एक सॉन्ग है, हैज़ नथिंग टू डू विद ईदर ऑफ देम, बट इसकी रिक्वेस्ट आई हुई है प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गया.

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
1: हेलो टेक्सास परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आर यू स्ट्रगलिंग विद योर क्वालिफिकेशन? यस, वी हैव लोन ऑप्शंस फॉर यू, सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है।
2: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
8: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

दिल्ली की जो बहुत पॉपुलर रिखी राम फैमिली है, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं और उनका म्यूज़िक से भी काफ़ी पुराना रिश्ता नाता है, ये उन्हीं के बेटे ऋषभ रिखी राम शर्मा, जिन्होंने जो पंडित रवि शंकर के डिसाइपल स्टूडेंट भी रहे हैं, एट सम पॉइंट इन हिज़ लर्निंग करियर इन्होंने रवि शंकर पंडित रवि शंकर जी से भी जो है अपनी रहनुमाई करवाई है, उनसे भी सीखा हुआ है. सो ये काफ़ी यंग हैं एंड ही प्लेज द सितार सो वेल. और इन्होंने ये जो है मेंटल हेल्थ की एडवोकेसी करते हैं थ्रू थ्रू दिस मेलोडियस म्यूजिक. सो दिस इज़ ऋषभ रिखी राम शर्मा, और इन्होंने ये पीस जो कंपोज किया था इसका नाम चाणक्य. वेलकम बैक, दिस इज़ आरजे एक्रोप वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन. शो खत्म होने में अबाउट 20 मिनट्स हैं, तो मैं आपको ये कुछ दो तीन बचे हुए हैं एडवर्टाइजमेंट्स की अनाउंसमेंट्स वो करती जाऊँ. इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स आई विल बी डूइंग दैट. सो शुरू करते हैं होको. आई डोंट नो इफ इट्स होको और हाको, इट्स HOCCO. सो ये है कोई पॉपुलर जेनरेशनल फूड प्लेस है जो इंडिया में अपेरेंटली काफ़ी पॉपुलर रही है, और अब ये नॉर्थ टेक्सस में आ रहे हैं. सो वेदर यू हैव बिन क्रेविंग देयर लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस और फ्लेवरफुल करीज, और द फेमस होको कोल्ड कोको, पीपल एब्सोल्यूटली स्वेयर बाय. सो अपेरेंटली दीज गाइज आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड नाउ दे आर हियर इन नॉर्थ टेक्सस. दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को ऑन प्रेस्टन रोड, और जब आप इनका साइन जो है द नेम इज़ HOCCO, ऑल इन कैप्स लॉक, आई थिंक कैपिटल लेटर्स में ही एग्जिस्ट करता है, बट दिस इज़ द स्पेलिंग HOCCO. You will experience the authentic flavors that India has loved so far, and they have some famous food brands as well. Information क्या आप उनके रेस्टोरेंट में जाके टेस्ट कीजिए. They are located in Frisco, and they say if you come hungry, you will leave with the taste of India. So this is Hoco that is located in Frisco. होको होम कमिंग वाला होको नहीं है, इसमें दो सीज हैं HOCCO एंड दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को. होको इन फ्रिस्को एंड दे आर नोन फॉर होको कोल्ड कोको. कितने सारे देखो राइम्स बन गए. सो इनका जो है आप ट्राई कीजिए एंड ज़रूर जाइए वहाँ पर. हमारे सफ़ी का जो सॉन्ग है वो मैंने लाइनअप किया हुआ है, लेकिन उससे पहले ये वाला सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है.

व्हाट अ कोइंसिडेंस. देखो, हम अगस्त 15 16 15 की तो हमने बात की थी बिकॉज इंडिपेंडेंस डे, एंड देन 16 बिकॉज आज 16 है. और कितने सारे एक्टर्स हैं, बॉलीवुड से रिलेटेड लोग हैं जिनका आज जन्मदिन है. उनमें से दो की तो हमने डेफिनेटली बात की और उनकी फिल्म का सॉन्ग भी सुना, विच वॉज मनीषा कोराला एंड सैफ अली खान. अनदर कोइंसिडेंस जो ये सॉन्ग वर्ल्ड रिक्वेस्टेड सॉन्ग है, सो आई प्लेड इट. एंड कोइंसिडेंस ये है कि ये जो फिल्म, ये भी अगस्त में ही रिलीज हुई थी. दिस फिल्म गॉट रिलीज्ड ऑन अगस्त 12, 1988. सो बहुत अच्छी फिल्म थी. दिस वाज लाइक अ कमबैक फॉर रेखा जी, हु वाज एक्सपीरियंसिंग अ लिटल स्लंप इन हर करियर. तो फिर ये राकेश रोशन की फिल्म, उनकी हाईली स्टेक्ड फिल्म ये उन्होंने बनाई थी, एंड रेखा वाज हर गुड, दे स्टिल आर रियली गुड फ्रेंड्स. तो ये सच अ पावरफुल परफॉर्मेंस, एंड फीमेल प्रोटैगनिस्ट रेखा जी का जो टाइटल, जो इनका जो कैरेक्टर था, उन्हीं के अराउंड ये सारी फिल्म बनी थी. एंड बहुत लोगों ने पसंद की थी, पावरफुल परफॉर्मेंस. एंड शी गॉट हर फिल्म फेयर एक्ट्रेस अवार्ड ऑल्सो थ्रू दिस फिल्म. फिल्म का नाम खून भरी मांग, दैट was released around this time, and this is a pure coincidence. I just saw happened to read the release date, and it mentioned that it was on August 12th. So middle of the August mein kitni sari cheeze hain jo aayi hain, and this wonderful film was also one of them. अब जो सॉन्ग है, जिसकी एक और सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, दिस इज़ अ पॉपुलर फिल्म. शायद इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी जिस तरह उन दिनों फिल्में चल रही थी, बट इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा था, एंड म्यूज़िक डेफिनेटली गार्नर्ड अ लॉट ऑफ फेम फॉर दिस फिल्म कॉल्ड अंजाम.

शाहरुख खान एंड माधुरी दीक्षित की ये फिल्म अंजाम, अभिजीत की आवाज़ विच सूटेड शाहरुख खान सो वेल. अच्छा, पीएमजे ज्वेल्स जो हैं इस ये स्टोर फ्रिस्को में लोकेटेड है एंड अभी फ्रेशली एंटर्ड हुआ है डैलस फ्रिस्को में. एंड दिस दे हैव बीन इन द ज्वेलरी बिजनेस फॉर मोर देन 60 इयर्स. दे हैव ब्रॉट एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप टू फ्रिस्को एज वेल. यू कैन एक्सप्लोर स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शंस फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन. ये जो है पीएमजे ज्वेल्स इंडोर्स किया है और एसोसिएटेड है महेश बाबू, जो कि सुपरस्टार हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के, और उनकी बेटी सितारा. एंड अभी अगेन अ कोइंसिडेंस, वी वर टॉकिंग अबाउट नम्रता शिरोडकर अ फ्यू मिनट्स अगो, जब हमने बात की थी कच्चे धागे की, और ये नम्रता शिरोडकर एंड महेश बाबू की बेटी हैं सितारा. तो एनीवे, महेश बाबू एंड सितारा जो हैं इस स्टोर से एसोसिएटेड हैं. दे एंडोर्स दिस नेम पीएमजे, विच इज़ अ नेम ट्रस्टेड बाय जेनरेशंस. PMJ Jewels Frisco on Main Street, and definitely discover jewelry that will tell your story. ये सॉन्ग हम शाहरुख खान की फिल्म का सुन रहे थे. शाहरुख खान पर ही फिल्म आया गया है. शाहरुख खान की एक और रीसेंट फिल्म जवान आई थी, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, नेशनल अवार्ड भी मिला था. और हमारे सफ़ी जी कहते हैं ये वाला सॉन्ग प्ले कर दीजिए. सो हियर यू गो सफ़ी, ये आपके लिए.

देखते ही देखते अच्छे अच्छे गाने सुनते ही सुनते टाइम का पता ही नहीं चला. टाइम हो रहा है अभी 9:56, ऑलमोस्ट 9:56, मीनिंग जस्ट 4 मिनट्स, एंड आई हैव 4 मिनट्स फॉर दिस टू प्ले द लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस शो, ऑफ माय शो टुडे. और वो है सोनाली बेंद्रे और आमिर खान पर फिल्माया गया. फिल्म का नाम सरफरोश. तो मैं ये सॉन्ग लगाऊंगी और यही सॉन्ग होगा आज के शो का आखिरी सॉन्ग. मैं आपसे मिलूंगी अब अगले संडे को, 7 to 10 मेरा ये शो आता है. दिस इज़ आरजे एक रूप साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. थैंक यू सो मच आप सबके साथ के लिए. थैंक यू सो मच आपके फ़ोन कॉल्स एंड योर लवली रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स. एंड अगर आपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट नहीं की और जस्ट ऐसे ही फ़ोन कॉल करके हालचाल मेरा भी पूछा और अपना भी बताया, सो उसके लिए भी थैंक यू सो मच. या फिर आप साइलेंट लिसनर येट प्रेजेंट ऑन द अदर एंड ऑफ द ट्रांसमिशन एंड द रीलिंग ऑफ दिस शो, सो उसके लिए भी आपका शुक्रिया. आपकी संडे सुबह अच्छी हो जाती है इन सॉन्ग्स के साथ. मेरी तो संडे सुबह एज वेल एज द अपकमिंग वीक बिकम्स सो लवली, एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू कमिंग बैक ऑन संडे मॉर्निंग हियर टू स्पेंड दिस 3 hours with you. चलिए अब मैं जाती हूँ यहाँ से. मधुलिका अब आएंगी एंड शी विल टेक ओवर द रेन्स फ्रॉम 10 to 12. शी विल बी डूइंग हर शो. मैं आरजे एकरूप आपसे लेती हूँ इजाजत. आई एम लीविंग फॉर टुडे फॉर राइट नाउ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट संडे विद दिस लवली सॉन्ग. बाय बाय.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
4: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
5: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain-friendly options.
4: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
6: अजी सुनते हो?
7: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
8: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
9: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience. With CSIA certified technicians and free estimates, Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: Call the SBA Loan Experts.
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: Call the SBA Loan Experts.
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: Call the SBA Loan Experts.
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द एसबीए लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
12: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
12: कहाँ?
14: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
15: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
16: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर, या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
17: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
18: डालस की धड़कन 104.9 FM फनेशिया रेडियो.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। जी हाँ, सैटरडे एंड संडे सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक होता है मेरा और आपका साथ ओनली ऑन जस्ट चिल, जहाँ करते हैं

एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। जी हाँ, सैटरडे एंड संडे सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक होता है मेरा और आपका साथ ओनली ऑन जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। अ बिग शाउट आउट टू एक रूप फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM। कमिंग बैक टू जस्ट चिल, संडे होता है हमारा फन फैक्ट सेगमेंट, तो कुछ मजेदार किस्से कहानी बातें करूंगी आपके साथ शेयर। साथ ही कर रहे हैं आज हम सेलिब्रेट 3 बॉलीवुड बर्थडेज। वन इज डेविड धवन, द सेकेंड वन बींग सैफ अली खान एंड द थर्ड वन बींग मनीषा कोइराला। सो एज यू वुड हैव गेस्ट, आज अगले 2 घंटे इन्हीं तीनों से रिलेटेड गाने होंगे प्ले। सो अगर हैं आपके मन में कुछ ऐसे गाने जो सुनने का बड़ा मन है, जिनमें या तो सैफ अली खान या मनीषा कोइराला या डेविड धवन की वो मूवी है, तो डेफिनेटली गिव मी अ कॉल। द नंबर इज 972-235-5555।

Well, that was taken from the movie सौदागर। जी हाँ, मनीषा कोइराला की पहली मूवी थी ये। जी हाँ, आज हम जस्ट चिल में सेलिब्रेट कर रहे हैं तीन बर्थडेज, एंड दैट इज डेविड धवन, सैफ अली खान एंड मनीषा कोइराला। अच्छा, संडे हमारे कुछ फन फैक्ट भी शेयर होते हैं, राइट? तो इन डिसीजन, यू नो, समझ नहीं पाना कि ये कि वो, ऐसा कि वैसा, यू नो दैट आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट इट। ये जो फीलिंग इन इट सेल्फ है ना, इट समटाइम्स योर ब्रेन सिंपली हैज़ नॉट फिनिश्ड प्रोसेसिंग द एक्सपीरियंस येट। कि आप कोई पूछे कि भाई कैसा लगा, यू नो, तो आप बोलोगे यार समझ नहीं आया, ऐसा लगा कि वैसा लगा। होता है क्या आपके साथ?

टेकन फ्रॉम द मूवी 1942 अ लव स्टोरी. अच्छा आपको बता दी चलूँ दैट दिस पार्ट ऑफ आर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स. ये जो है ये है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US. तो अगर आपको टैक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गाइडेंस हेल्प चाहिए देन दे आर देयर फॉर यू. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. तो आपको चाहे खुद के लिए या अपने बिजनेस के लिए कोई भी ज्ञान, कोई भी हेल्प, कोई भी इन्फॉर्मेशन टैक्स रिलेटेड चाहिए देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट एजी फिनटैक्स. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड दे गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. आप एजी फिनटैक्स को कॉल करें. द नंबर इज 4699429888 और यू कैन विजिट agfintax.com. दैट्स agfintax.com.

वेल, अगर आपको कोई ऐसा रोग लग गया है और कोई नहीं जानता क्या करें उसका, तो मैं बताती हूँ, आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जा सकते हैं, बिकॉज वो आपका रोग पकड़ भी लेंगे और उसका इलाज भी कर देंगे. राइट, कई बार होता है कि आप डॉक्टर के जाते हैं और वो आपको बस 5 मिनट में देख के कि हाँ जी बस ये है और वो है, आपको लगता है कि यार इन्होंने तो पूरी बात सुनी भी नहीं. नहीं, सो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर यहाँ ऐसा नहीं होगा. आपका हर अपॉइंटमेंट जो है इज स्केड्यूल्ड फॉर अबाउट 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. और ये बात ये समझते हैं, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट हियर, यू आर फैमिली. एंड फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर रखें याद. 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल, फिर चाहे वो एनजाइटी केयर हो, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज या लिवर कंसर्न्स हो, वाइटामिन B12 की डेफिशियंसी टेस्टिंग हो, एंड सो मच मोर. दे आर ऑल अवेलेबल एट पैशन हेल्थ. सो डू स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टूडे. आप नंबर रखें याद, द नंबर इज 214-666-6259. एंड याद रहे, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज देयर पैशन.

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
9: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
10: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
9: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रैंच पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
11: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
12: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

was taken from the movie ये दिल लगी. दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल. जहाँ कर रहे हैं हम, एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल. वेल, आज संडे के जस्ट चिल सेगमेंट में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तीन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. जी हाँ, पहले सेगमेंट में हमने सेलिब्रेट किया मनीषा कोइराला का जन्मदिन. इस सेगमेंट में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सैफ अली खान की बर्थडे. एंड देन द नेक्स्ट सेगमेंट वुड बी सेलिब्रेटिंग डेविड धवन्स बर्थडे. सो बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग, आई डू वॉन्ट यू ऑल टू नो दैट कुमार सानू आ रहे हैं द अनफॉरगेटेबल 90s के वो मेलोडियस सॉन्ग्स लेकर. जी हाँ डैलस, गेट रेडी फॉर अ नाइट फिल्ड विद टाइमलेस मेलोडीज, अनफॉरगेटेबल रोमांस एंड प्योर 90 का नॉस्टैल्जिया. जी हाँ, द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड मोस्ट आइकॉनिक लव सॉन्ग्स इज कमिंग लाइव टू प्लेनो. जी हाँ, एक्सपीरियंस कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट अनफॉरगेटेबल 90s ऑन सेप्टेम्बर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स सेंटर इन प्लेनो. You can sing along to the songs that you grew up with and experience the magic of an era that still lives in our hearts. होता है ना वो पुराने गाने, आई मीन इतने भी पुराने नहीं है, कम ऑन, लेकिन जब वो सुनते हैं तो वो प्यारी प्यारी सुनहरी यादें कुछ ताज़ा हो जाती हैं, राइट. सो देयर इज लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, सो विद फ्री पार्किंग एंड एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस एज वेल. सो डू बुक योर टिकट्स टुडे एट eventbrite.com और यू कैन कॉल 214-869-2668 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप.

अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा राइट, कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन ऑपोजिट्स डोंट ऑलवेज अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म. ये जरूर याद रखिएगा, बिकॉज रिसर्च जनरली फाइंड्स दैट कपल्स ऑफन रिजेंबल ईच अदर इन इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड्स, बी इट वैल्यूज, एजुकेशन, हैबिट्स या फिर लाइफ स्टाइल, मोर देन द ऑपोजिट्स अट्रैक्ट आइडिया सजेस्ट, राइट? सो द राइट पर्सन मे नॉट बी अ यूजुअल टाइप, एंड यू नो वॉट अट्रैक्ट्स यू इंस्टेंटली एंड वॉट मेक्स समवन अ कंपैटिबल लॉन्ग टर्म पार्टनर कैन बी वेरी वेरी different things. We are celebrating Saif Ali Khan's birthday in this segment, so if you do have a song in mind which has Saif Ali Khan and you really want to listen to it, do give me a call. The number is 972-235-5555.

वो तो है ना कि भाई ये लड़की है कहाँ, आप ढूंढिए, जरूर मिल जाएगी। अच्छा, आपको मैं तनिष्क के बारे में बताना चाहूंगी, बिकॉज डायमंड्स आर्ट जस्ट फॉर एवर, दे आर इवन मोर इरेजिस्टिबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। जी हाँ, इंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट। तो आप अपना पुराना गोल्ड जो है, अगर वो 18 कैरेट से ऊपर का है, तो यू कैन गो एंड एक्सचेंज दैट एज वेल। सो सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई। विजिट तनिष्क इन फ्रिस्को एंड गो अहेड एंड बाय दोज डायमंड्स। डायमंड्स आर फॉर एवर।

Well, that was taken from Tara Rampam, Up To Forever. And हो जाता है जब गाड़ी कभी आप तेज चला रहे हो या आपके आगे पीछे वाला तेज या कुछ गलत चला रहा हो, एंड यू डू गेट इन्वॉल्व इन अ कार या कोई ट्रक एक्सीडेंट या फिर कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट, तो आपको अटर्नी ओमार ख्वाजा रखने हैं याद, क्योंकि ना केवल ये आपका केस लड़ेंगे, आपको कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे, ये इंश्योरेंस कंपनी से भी डील करेंगे. सो सारा स्ट्रेस उनका, एंड अगर आप केस जीत गए तभी आप इन्हें पे करेंगे. यू डू नॉट पे अंटिल यू विन. सो फॉर फ्री कंसल्टेशन आप अटर्नी ओमार ख्वाजा को कॉल करें. द नंबर इज 4693005046, और यू कैन विजिट अटर्नी ओमार.com. दैट्स अटर्नी ओमार.com.

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
6: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
2: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
6: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
8: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
9: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
8: फिकर नॉट, वी हैव द Perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi खबर, उनका AI powered प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
12: डोंट टच दैट डायल, कीप लिसनिंग।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सुन रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूं मधुलिका, लेकर आई हूं जस्ट चिल, जहां करते हैं हम as the name suggests, just chill. Well, आज हम तीन बर्थडेज बॉलीवुड की सेलिब्रेट कर रहे हैं. इन द फर्स्ट सेगमेंट वी सेलिब्रेटेड मनीषा कोइराला, इन द नेक्स्ट सेगमेंट आई मीन द प्रीवियस वन वी सेलिब्रेटेड सैफ अली खान, एंड इन दिस सेगमेंट वी आर सेलिब्रेटिंग डेविड धवन्स बर्थडे. एंड समहाउ

कर रहे हैं. इन द फर्स्ट सेगमेंट वी सेलिब्रेटेड मनीषा कोराला. इन द नेक्स्ट सेगमेंट आई मीन द प्रीवियस वन वी सेलिब्रेटेड सैफ अली खान. एंड इन दिस सेगमेंट वी आर सेलिब्रेटिंग डेविड धवन्स बर्थडे. एंड समहाउ डेविड धवन सुनते ही मुझे गोविंदा याद आता है. एंड सो यस वी विल बी प्लेइंग डेविड धवन की मूवीज के कुछ गाने एंड खास तौर पर गोविंदा पर फिल्माए हुए. सो इफ यू हैव एनी सॉन्ग इन माइंड द स्टूडियो नंबर 972-235-5555. आई विल बी विद यू टिल नून.

वेल, ये तो मूवी थी हीरो नंबर वन, लेकिन अगर आपका ड्रीम नंबर वन ये है कि आप अपना एक ड्रीम होम खरीद लें, तो मैं ड्रीम होम मोर्गेज के बारे में बताना चाहूँगी, बिकॉज योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मोर्गेज। यहाँ 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज ने बहुत सी फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री को हेल्प किया है टू टर्न होम ओनरशिप इंटू रियालिटी विद पर्सनलाइज मोर्गेज सोल्यूशंस एंड अ स्मूद स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। स्पेशली जो पहली बार घर खरीद रहे होते हैं उनको पूरा यहाँ का प्रोसेस नहीं पता होता है, तो दे रियली स्ट्रीमलाइन इट फॉर यू एंड दे पर्सनलाइज इट फॉर यू। अच्छी बात यह है दैट दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स और इनकी जो एक्सपीरियंस टीम है इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस विच आर टेलर्ड टू योर नीड्स। तो जिस तरह की आपकी ज़रूरत होगी उसी तरह से वो उस लोन, उस मोर्गेज को टेलर कर सकते हैं। वेदर यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम और यू आर अपग्रेडिंग और रीफाइनेंसिंग, स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टुडे। आप ड्रीम होम मोर्गेज को कॉल करें, द नंबर इज 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स। ड्रीम होम मोर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन। एंड द नेक्स्ट वन, वेल दैट्स टेकन फ्रॉम बड़े मियाँ छोटे मियाँ।

वेल, अगर होटल में खाना ही है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट जाएं। जी हाँ, तंदूरी फ्लेम इज़ लोकेटेड इन गार्लैंड। इट्स अ न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स। तो चाहे आपको सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स खाने का मन है, या रिच करीज, या फिर आपकी वो सारी नॉर्थ इंडियन फेवरेट डिशेज विद दैट होम स्टाइल पंच, देन तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट इज़ वेयर यू नीड टू गो। चाहे यू नो, फ्रॉम स्मोकी तंदूरी कबाब से लेके वेलवेटी करीज एंड फ्रेश गर्मा गर्म नान, विल एवरी प्लेट feels like a celebration. So do step in today and let Tandoori Flame serve you the kind of meal that turns an ordinary day into a feast. Tandoori Flame restaurant located in Garland. अच्छा, आप जो अगला गाना प्ले कर रहे हो ना, एवरी टाइम एनी टाइम आई हेयर दिस सॉन्ग मुझे मेरी दादी याद आती हैं, क्योंकि उनको ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड अब आप जब सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उन्हें क्यों नहीं पसंद था। तो वो मेरी तो दादी थी, बट कई मेरे कजिन्स की नानी भी थी, एंड इसीलिए उन्हें ये गाना नहीं पसंद था।

वेल, अगर मैं आपको बताऊं कि आप कुछ कर सकते हैं और आपकी एंट्री जो है वो आ जाएगी चौकटा और रक्षाबंधन की जो ये गिव अवे है उसमें. जी हाँ, इस रक्षाबंधन फन एशिया रेडियो एंड चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरॉन्ट सुनना चाहते हैं आपकी मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर. सो आपके भाई या बहन के साथ कोई बड़ी प्यारी सी, अनोखी सी, शैतानी भरी, प्यार भरी कोई भी मेमोरी है तो करें हमारे साथ शेयर. जी हाँ, एंड यू नो, एंड आप हमें कॉल करके वो मेमोरी शेयर करेंगे तो आपको ग्रैंड प्राइज में एक अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन भी मिल सकता है. यू कैन इवन विन डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड यू नो. तो जो ये ग्रैंड प्राइज है अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरॉन्ट, इसके लिए आपको बस मुझे कॉल करके अपने भाई या बहन के साथ कोई अनोखी, कोई प्यार भरी, कोई नटखट, कोई भी चुलबुली सी मेमोरी करनी है शेयर. एंड आपकी फिर एंट्री ली जाएगी एंड देन इवेंचुअली विनर विल बी पुल्ड आउट. सो राइट, फॉर कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स चेक आउट फन एशिया रेडियो का सोशल मीडिया पेज चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरॉन्ट वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. याद रखिएगा दैट यू नीड टू बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई एंड प्लीज डू प्ले रिस्पॉन्सिबली. And well, the next song is taken from the movie Bade Mia Chote Mia, and that is Makhna.

God, what is he doing, God? What an idiot. God, what is he doing, God?

Well, you are tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 972-235-5555.

ससुराल गेंदा फूल टेकन फ्रॉम दिल्ली 6। ये बात तो सच है नहीं कि एवरी रिलेशनशिप इन द ससुराल फील्स डिफरेंट। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब कुछ रोमांटिक है। मतलब फैमिली में हर तरह के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, एंड ये गाना थोड़ा सा नटखट वाला है। बेसिकली ये जो दिल्ली 6 का वर्जन है इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग, जहाँ पर लेडीज़ जो हैं वो बैठ कर चुटकियाँ ले रही हैं, मजाक कर रही हैं, एंड इंट्रोड्यूस कर रही हैं कि भाई ससुराल में किस किस तरह के लोग हैं, है ना। सो एवरी रिलेशनशिप इन द ससुराल फील्स डिफरेंट। ये जो सॉन्ग है इट ह्यूमरसली मेंशंस फैमिली डायनामिक्स रादर देन जस्ट प्रेजेंटिंग मैरिड लाइफ एज ओनली बीइंग रोमांटिक। तो ये भी फैक्ट है कि ससुराल के जितने भी रिलेशन्स होते हैं दे आर इट्स बीइंग ब्यूटिफुली कंपेयर्ड इन अ वेरी प्लेफुल एंड लेयर्ड मैनर। अ न्यू हाउस होल्ड कैन बी कलरफुल, कैन बी क्राउडेड, कैन बी कॉम्प्लिकेटेड and amusing as well and full of different characters. That's the beauty of when you get married and you come to a new family and you start adapting to it.

टेकन फ्रॉम द मूवी लापता लेडीज, दैट वॉज ओ सजनी रे। अच्छा, कभी कभी होता है कि ना चाहते हुए भी आप कोई कॉन्वर्सेशन में घुस जाते हैं, राइट? दो लोगों की कॉन्वर्सेशन में बीच में घुसना भी एक टैलेंट है, क्योंकि अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता सही से, तो आपका एक सेंटेंस आपको सीधे कॉन्ट्रोवर्सी में डाल सकता है। कभी आप किसी और की कॉन्वर्सेशन में बिना इनविटेशन के फंस गए हैं, ऐसा हुआ है, क्योंकि आपने सिर्फ एक इनोसेंट सा कमेंट क्या कर दिया और 10 मिनट बाद आपसे ही पूछा जा रहा है कि अच्छा अब तुम बताओ कि ये गलती है किसकी, एंड यू आर ऑन अ स्पॉट बिकॉज यू रियली डोंट नो, यू हैवंट हर्ड द इंटायर स्टोरी, एंड होता ना यार तेरी बातों में फंस गया।

वेल दैट वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी फाइटर एंड दैट वॉज शेर खुल गए. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शेर खुल गए मैंने कि आप बस बिंदास हो गए. एंड जब आप बिंदास हो जाते हो ना तो बिना कोरियोग्राफी के भी आप अच्छे से झूम सकते हैं कोई भी गाने पे. एंड जैसे एक वो कहते हैं ना कि झूमे जो पठान, झूमे जो पठान में मुझे लगता है कि जो झूमना है इज़ बेसिकली सजेस्टिंग स्वेइंग और मूविंग विद हैप्पीनेस एंड अबैंडन. कई बार होता है ना कि आप इतने खुश हो जाते हैं कि बिना म्यूजिक के भी झूमने लगते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव कि जब नाचो तो ऐसे नाचो कि कोई नहीं आपको देख रहा है, आप बस खुद ही के लिए झूम रहे हैं.

Well, that was Main Parwana, taken from Pippa. Well, this is Madhulika. लेकर आई थी मैं जस्ट चिल, जहाँ किया हमने, as the name suggest, just chill. Well, it's always always fun talking to you all and playing some melodious songs along the way. It's time for me to say bye bye, but आप कहीं जाइएगा नहीं. Do stay tuned in to 104.9 FM, Fun Asia Radio, as यहाँ हमारे shows आपको entertain करते रहेंगे. Coming up next is Neelam. मैं मिलूँगी आपको अगले शनिवार. जी हाँ, सैटरडे एंड संडे 10 AM टू नून होता है मेरा और आपका साथ, ओनली ऑन जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम, एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल. वो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डैलस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
8: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
10: बेटा, 95% आए?
11: हाँ मम्मी।
10: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
8: मेरा?
10: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
12: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
13: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
12: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
13: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
12: Are you trying to protect your business, retain top talent and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
14: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

दिस इज KZMB 104.9 FM फनी रेडियो पे सुन रहे हैं आप मुझे यानी नीलम को और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। हमेशा हम भागते ही रहते हैं दौड़ते ही रहते हैं राइट वीकेंड नॉट वीकेंड कोई फर्क नहीं होता। मंडे टू फ्राइडे सोचते हैं कि कब वीकेंड आ जाए सैटरडे संडे कुछ आराम मिल जाए, लेकिन सैटरडे संडे कभी कभी वीकेंड में भी इतने काम होते हैं। हमारे घर के काम तो होते ही है लेकिन सोशल इवेंट्स ये इवेंट वो इवेंट इतनी सारी जिंदगी में कब लगता है कि बस हम दौड़ते ही रहेंगे। लेकिन सिर्फ दौड़ भाग में जब कानों में थोड़े से अच्छे गाने हो जाए थोड़ा सा सुकून मिल जाए तो क्या बात है। बस यही कोशिश होती है मेरी एवरी सैटरडे आफ्टरनून एंड संडे आफ्टरनून आपके साथ रहती हूँ मैं 2 बजे तक। सिर्फ 1 घंटे की होती है ये बातें, 1 घंटे का सेगमेंट होता है जहाँ फिल्मी गानों की शुरुआत होती है, लेकिन हम आपको ले चलते हैं धीरे धीरे बॉलीवुड की दुनिया से बाहर। जी हाँ, जहाँ पे कुछ ऐसे नायाब गाने होते हैं, प्राइवेट एल्बम्स के होते हैं, गज़ल्स की बातें होती है, वेब सीरीज की OTT प्लेटफॉर्म है एंड ऐसे बहुत सारे कुछ गैर फिल्मी गाने।

भुलिया भुलिया में रास्ता तेरा, क्या बात है। प्रीतम के संगीत में आशीष कौर की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। आशीष कौर जो है फिल्मी गानों में ऑफकोर्स आपने उनकी आवाज़ सुनी है, लेकिन उन्होंने जब वो सिर्फ 5 साल की थी तो गुरबानी की गाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो चाहते थे कि वो सिर्फ धार्मिक संगीत सीखे आशीष कौर ने। तब वो बचपन से ही वो सारे गाने गुरबानी और जो भी उनकी जो बातें होती है सबद जी बिल्कुल, वो गाते गाते उनके सुरों में वो ठहराव आ गया, रूहानियत जो हम अक्सर उनके गानों में उनकी आवाज़ में सुनते हैं। एंड दैट इज़ आशीष कौर, जिन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो ठहराव आप सुनते हैं, जो रूहानियत है, दैट इज़ बिकॉज शी स्टार्टेड सिंगिंग गुरबानी व्हेन शी वाज 5 ईयर्स ओल्ड। ऐसे बहुत सारी बातों की बात, कलाकारों की बातें, साज़ा और आवाज़ की बातें मैं नीलम करती रहती हूँ आपके साथ एवरी वीकेंड एंड सैटरडेज़। बॉलीवुड की बातें होती है बॉलीवुड सेगमेंट की, लेकिन संडेज़ कुछ और बातें विच इज़ नॉट फिल्मी।

तेरे दिल से मेरे दिल पर, बहुत ही खूबसूरत ये बातें जी। बिल्कुल, दिलों की बातें तो होती ही रहेगी, जहां संगीत है वहां दिल की बातें होनी ही चाहिए। और मैं 4.9 FM फनेश रेडियो, मैं हूं नीलम आपके साथ लाइक एवरी वीकेंड। उमर ख्वाजा जी, हाँ कभी कभार हमें नहीं ये चाहते हम, लेकिन आप कितने भी अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो, अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में कुछ मसला हो ही जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है छोटा मोटा, राइट? एट दैट टाइम यू डिजर्व अ माइंड, वो कहते हैं पीस ऑफ माइंड, राइट? मेंटल पीस। यू डोंट वांट टू डील विद इंश्योरेंस कंपनी, यू डोंट वांट टू डील विद एनी अदर स्ट्रेस, किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी होती है, तब आपकी मदद बिल्कुल कर सकते हैं उमर ख्वाजा जी। 4693500046 इज द वेबसाइट, द नंबर टू कॉल दैट इज 4693005046, और यू कैन विजिट attorneyomar.com। वंस अगेन दैट इज attorneyomar.com, जिनको आप बिल्कुल वेबसाइट पे उनकी जा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी पे नहीं करना अनटिल यू विन द केस। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अनटिल यू विन, एंड दैट इज उमर ख्वाजा। चलिए, हेल्थ की बात निकली है तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का भी आपको मैं नंबर देती चलूं, ताकि अगर आप आपके नए डॉक्टर की तलाश में हैं, या इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी हेल्थ केयर फिजिशियन, वेल दिस इज द नंबर 2146662 59। वंस अगेन दैट इज 2146662 59, जहां पर एनुअल फिजिकल से लेके एंग्जायटी केयर से लेके सारी आपके जितने भी हेल्थ कंसर्न है एक ही नाम है, दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर 2146662 59। सुन रहे हैं आप मुझे यानी कि नीलम को, एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत, और आपकी खिदमत में कुछ मैं गैर फिल्मी गाने, गजल, सूफी संगीत और कुछ ऐसे ही प्राइवेट एल्बम्स के गाने प्रस्तुत करती रहूंगी टिल 2 PM।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। जगजीत सिंह साहब को याद कर लिया, बस आपका और हमारा रविवार बन गया, राइट। संडे आफ्टरनून बन गई हमारी, ये आवाज़ सुनकर उन्होंने 4.9 FM फनीशा रेडियो संडे सेगमेंट 2 बजे तक, जहाँ पर कोशिश होती है गैर फिल्मी गाने गजल आपके लिए प्रस्तुत करूँ। वेल, ये जो गजल आपने सुनी गैर फिल्मी तो हम नहीं कह सकते, फिल्मी गजल थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गजल जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में जो आपने सुनी। और अब जो आपको अगली आवाज़ सुनवाने जा रही हूँ, एक्चुअली मैं भी ये आवाज़ बहुत अरसे के बाद सुनूंगी। पता नहीं, ऐसे ही कभी कभी यू नो आपको कोई कलाकार आपके जहन में आ जाते हैं कि अरे ये, जब भी मैं गैर फिल्मी गानों की बात करती हूँ, एंड यू नो आई वॉज ट्राइंग टू रिमेंबर फ्यू हमारे 80s, सो वेल 80s में कोई पॉप या सिंगर्स ऐसे इतने नहीं थे जितने लेट 90s में आए थे। तो खैर 90s के बाद 2000 के एरा में भी कुछ सिंगर्स के मैं नाम सोच रही थी कि कितने कितने ऐसे अच्छे अच्छे सिंगर्स थे जिन्होंने प्राइवेट एल्बम्स में गाने गाए थे, एंड सडनली वन नेम अकर टू मी जिनका नाम है वसुंधरा दास। सो आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू इफ़ यू रिमेंबर दिस नेम। मेरे जहन में भी ऑनेस्टली इट केम आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, दिस नेम वसुंधरा दास। एक समय, एक वक्त हुआ करता था व्हेन शी वॉज वेरी पॉपुलर, हालांकि उन्होंने 2 या 3 गाने ही गाए हैं इतने कि जो ब्लॉकबस्टर बन गए, लेकिन शी वॉज एन एक्ट्रेस एज वेल। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज एन एक्ट्रेस इफ यू रिमेंबर वसुंधरा दास, और इवन एज ए सिंगर इफ यू रिमेंबर वसुंधरा दास। तो चलिए आप याद कीजिए, तब तक मैं आपको सुनवाती हूँ यही गाना वसुंधरा दास की आवाज़ में।

वसुंधरा दास की आवाज़ सुनी आपने, और मैंने नॉट एज अ सवाल, राइट, इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन कि अरे वसुंधरा दास कौन है, मुझे जल्दी जल्दी बताइए. मैंने ऐसे ही पूछा था कि डू यू इवन रिमेंबर दिस नेम, आपको नाम याद है या आवाज़ याद है. सो वेल, आई गॉट कपल ऑफ कॉल्स, ज़्यादा नहीं आए, सिर्फ दो कॉल्स आए, और दोनों ने मुझे उन्हें एज एन एक्ट्रेस जहाँ देखा था वो याद करके कहा. जी बिल्कुल, शी इज अ मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट. वो एक सिर्फ बेहतरीन सिंगर ही नहीं, एक मशहूर तो मैं नहीं कहूँगी इतनी पॉपुलर, लेकिन उन्होंने दो या तीन फिल्म्स की है. उसमें से इफ़ यू रिमेंबर, देर वॉज अ कमल हासन की एक फिल्म थी हे राम, जो और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में बनी थी, हिंदी में भी बनी थी. तो हे राम में कमल हासन की जो पत्नी का रोल, आई डोंट रिमेंबर इफ इट वॉज हिज वाइफ, नो, हे राम में उनकी वाइफ रानी मुखर्जी थी. बट वसुंधरा दास का भी एक अच्छा सा रोल था इन दैट फिल्म. और उसके अलावा उन्होंने आमिर खान के साथ दिल चाहता है में भी काम किया था. सो दैट इज़ वसुंधरा दास. लेकिन वसुंधरा दास की सबसे बड़ी पहचान एज अ सिंगर अगर है तो दैट इज शकला का बेबी. इफ़ यू रिमेंबर दैट सॉन्ग, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग बन गया था या रहमान के साथ, तो वो शकला का बेबी जो है उसकी सिंगर का नाम है वसुंधरा दास. तो बस ऐसे कभी कभी यू नो नायाब कलाकार, नायाब तराने हमें याद आ जाते हैं जो हम आपके लिए लाते हैं संडे के सेगमेंट में. जी हाँ, संडेज हम आपके लिए गैर फिल्मी गाने, वेब सीरीज के गाने, पाकिस्तानी ड्रामास के गाने और ऐसे बहुत सारी बातें टिल 2 PM.

0: भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम एक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
7: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: Don ko pakadna mushkil hi nahi.
9: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
10: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
11: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
9: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
13: वेट, इतना सब और प्राइस?
11: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरो।
15: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
16: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
15: नहीं।
16: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
15: नहीं।
16: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
15: वो भी नहीं।
16: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
18: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में सब संभालेंगे?
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
19: वेलकम बैक, दिस इज KZMP 104.9 FM, फनीशा रेडियो पे। मैं हूं नीलम आपके साथ। वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम, प्यार भरा स्वागत। जी हाँ, आपका और हमारा ये म्यूजिकल साथ, म्यूजिकल मुलाकातें होती है सैटरडेज 12 से 3 के बीच में एंड संडेज 2 बजे तक। सैटरडेज 12 से 2 के बीच में प्रस्तुत करती हूँ आपके लिए बॉलीवुड के बेस्ड गाने, थीम बेस्ड गाने होते हैं सेगमेंट में। 2 से 3 के बीच में हमारी जो बातें होती है वो होती है कम्युनिटी की। जी हाँ, कम्युनिटी राउंड अप एंड टुडे दैट इज संडे आफ्टरनून 1 बजे तक आप मुझे गुजराती रीजनल कार्यक्रम में सुनते हैं 12 से 1 के बीच में. राइट आफ्टर दैट बस यही बात है आपके साथ गैर फिल्मी और रहता है आपका हमारे साथ 2 बजे तक. तारा कमर्शियल एनर्जी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. 8444282808 इज द नंबर और यू कैन विजिट taraenergy.com. तारा कमर्शियल एनर्जी इन बिजनेस इन टेक्सास सिंस 2002. जी हाँ 2002 एंड आई रिमेम्बर ड्यूरिंग दैट ईयर आई यूज टू बी ऑन सम अदर रेडियो स्टेशन इन 2002 एंड आई यूज टू एडवर्टाइज द सेम नंबर एंड नेम एंड दैट इज तारा कमर्शियल एनर्जी. बातें होती रहेगी जी बिल्कुल. चलिए एक बार फिर से इस संगीत के सफर को शुरुआत करते हैं जहां पर प्राइवेट एल्बम से लेके ओटीटी वेब सीरीज से लेके पाकिस्तानी ड्रामास के भी गाने होते हैं आप ही के लिए. टिल 2 PM विथ मी योर होस्ट नीलम एवरी सैटरडे एंड संडे ऑन 104.9 FM.

रह गुजर ये है पाकिस्तानी ड्रामा का नाम, जिससे आपने ही इस बहुत ही खूबसूरत गीत को सुनने की फरमाइश की थी। 104.9 FM एशपनेशा रेडियो पे मैं भी हूँ आपकी रह गुजर, लेकिन सिर्फ वीकेंड में। जी हाँ, आपके वीकेंड की राहों की रह गुजर हूँ मैं। जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, मैं रहती हूँ आपके साथ टिल 2 PM। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमें सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिमिलरली सफ़ी, थैंक यू सो मच, वन ऑफ अवर बेस्ट लिसनर एंड दैट इज सफ़ी। आदर्श बाल विद्यालय, ये मेरे स्कूल का नाम नहीं है। नो इट्स नॉट माय स्कूल नेम। आदर्श बाल विद्यालय एक ऐसी सीरीज है जो बहुत ही हल्की फुल्की, एंड इसे इतनी अच्छी व्यूअरशिप मिली है, ग्लोबल व्यूअरशिप मिली है, विच इज़ अ वेब सीरीज ऑन आई डोंट नो विच प्लेटफॉर्म इज दैट, बट OTT पर ही है। आदर्श बाल विद्यालय है उसका नाम। एंड इट्स अबाउट अ स्कूल इन अ वेरी रिमोट एरिया, जहाँ पर एक ही स्कूल है और जहाँ पर बच्चे जाते हैं, दूर से आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कस्बों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। KK है उसमें एक मेन किरदार उनका। तो इट इज़ सच अ पॉपुलर सीरीज कि अब उसके जो मेकर्स है, उन्होंने सीजन 2 और सीजन 3 बनाने की भी अनाउंसमेंट कर दी है। एंड वी नीड मोर ऑफ सच शोज, राइट, जहाँ पर बच्चों की कहानियाँ हो, जहाँ पर हल्की फुल्की सोसाइटी की बातें हो, सामाजिक बातें हो, परिवार की बातें हो, नॉट कि यार कुछ भी गैंग वॉर चलता रहता है। एंड आई डोंट वांट टू स्टार्ट दैट टॉपिक बिकॉज आई नो यू आर ऑन द सेम ट्रैक। आपको भी लगेगा कि नहीं, बहुत हो जाती है कभी कभी एक्शन सीरीज एंड ऑल दोज काइंड ऑफ ऑब्सीन लैंग्वेजेस एंड ऑल। तो अच्छा लगता है जब आदर्श बाल विद्यालय जैसी हल्की फुल्की बालक के लेके, स्टूडेंट से लेके टीचर्स की कहानियाँ होती है। एंड बस ऐसी कहानियाँ मैं लाती हूँ आपके लिए एवरी वीकेंड।

तुम बिन जिया उदास, आप उदास मत होना। हम आपके लिए अच्छे अच्छे गाने लाते हैं, बहुत सारी बातें लाते हैं। सैटरडेज बॉलीवुड की बातें होती है, थीम बेस्ड अलग अलग बातें। संडेज ओटीटी की बातें, गैर फिल्मी बातें, नए कलाकारों की बातें।

अच्छा, आपको भी ऐसा होता होगा, राइट? बिकॉज़ यू ऑफ कोर्स डोंट, आई मीन, इफ़ यू आर लाइक मी हु इज़ फ्रॉम बॉम्बे, हु इज़ नॉट फ्रॉम साउथ, एंड ऑफ कोर्स आई वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, लेकिन मैं मराठी जानती हूँ, मराठी समझती हूँ, बट नॉट तेलुगु, तमिल या मलयालम. मैं आई कांट इवन अंडरस्टैंड वॉट दे आर सेइंग. मराठी वेरी वेल, आई कैन स्पीक लिटिल बिट एज वेल. खैर, वो दैट इज़ नॉट अ टॉपिक. लेकिन जब आप किसी को सुनते कि अरे ये बहुत अच्छी तेलुगु फिल्म थी, अरे ये बहुत अच्छी मलयालम फिल्म थी, आई फील सो लेफ्ट आउट. मुझे लगता है कि मैं नहीं देख पा रही हूँ. एंड देन ऑफकोर्स देर आर सब टाइटल्स विच यू कैन ऑलवेज वॉच इट विद सब टाइटल्स, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, राइट? कभी कभी लगता है कि इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज सब टाइटल्स में, यू मे लूज दैट इंटेंसिटी, वो जो कहते हैं, एंड यू नो द डायलॉग डिलीवरी, जो डायलॉग्स होते हैं वो अगर आप नहीं समझ पाते तो इट्स द फ्लेवर ऑफ द फिल्म. क्या मजा सिर्फ सबटाइटल्स देखने. खैर, लेकिन वो भी देख लेती हूँ कभी कभी. तो अब आपके लिए अच्छी खबर ये है, इफ़ यू आर ऑल्सो लाइक मी हु डजंट अंडरस्टैंड तेलुगु तमिल, लेकिन अच्छी फिल्म देखने के लिए आपको अच्छा लगता है, एंड स्पेशली सस्पेंस या थ्रिलर जैसी, सो OTT पे एक हिंदी में रिलीज हुई, हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज हुई है तेलुगु की एक सुपरहिट फिल्म थी जिसका नाम है माँ इति बंगारम. आई होप आई एम सेइंग इट राइट. या माँ इति बंगारम, जो बहुत ही सुपरहिट थी, एंड दैट वॉज एक्चुअली सस्पेंस थ्रिलर फिल्म. तो अब हिंदी में आफ्टर आई थिंक 2 or 3 years, इट वॉज रिलीज 2-3 years अगो, बट 2-3 साल के बाद अब हिंदी में उसका डब वर्जन आ गया है OTT पे. तो बिल्कुल अगर आप देखना चाहें तो उसका नाम है माइती बंगारम, विच विल बी अगेन इन हिंदी. तो बस OTT जिंदाबाद. चाहे वेब सीरीज हो या कोई भी और रीजनल फिल्म की फिल्म आपको देखनी है, अगर हिंदी में आ जाए तो हम देख सकते हैं. और ऐसे बहुत सारी खबरें, ऐसे बहुत सारे अपडेट्स मैं नीलम आपके लिए लाती हूँ एवरी संडे.

सर्वगुण संपन्न, ये गाने का नाम नहीं था, गाने का नाम था खत बाय नवजोत आहूजा, सिंगर है वो। लेकिन मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी सीरीज जो 14th August, जी हाँ, पिछले दो दिन पहले ही रिलीज हो चुकी है Z5 पर, और उसमें है वाणी कपूर। अब आप सोचते होंगे वाणी कपूर कौन? वाणी कपूर वही जिन्होंने रणवीर सिंह के साथ भी काम किया है और बहुत सारे और भी हीरोज के साथ काम किया है। वेल, अब वो वेब सीरीज में दिखेंगी वाणी कपूर, और उनके साथ जो है वो है इश्वाक सिंह। तो ये दोनों मिलकर एक हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, एंड अगेन उसका नाम है सर्वगुण संपन्न। और हमारे लिसनर्स भी बिल्कुल है सर्वगुण संपन्न। बॉलीवुड की बातें हो, गैर बॉलीवुड की बातें हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, इतनी ही जानकारी, इतने ही कॉल्स, इतनी ही रिकमेंडेशन होती है मुझे, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके इतने सारे कॉल्स पार्टिसिपेशन के लिए एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM।

चल चलिए नदिया के उस पार। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ सज्जाद अली साहब के साथ फरहीन राजा की आवाज़ थी। बस यही था आज का हमारा सेगमेंट। फिल्मी गानों को थोड़ा आराम देते हैं हम संडे को और रुक करते हैं नॉन फिल्मी गानों की तरफ। और उसी के साथ OTT पे कौन सी वेब सीरीज तहलका मचाती है, कौन सी नई आई है वगैरह वगैरह, वैसी बातें भी होती है आप सभी के साथ, आपके ढेर सारे कॉल्स और प्यार के साथ। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड्स। मैं हूँ नीलम, लेती हूँ आप सभी से इजाज़त अनुमति। अब मुलाकात होगी अगले शनिवार, एक्चुअली नहीं होगी अगले शनिवार, मैं नहीं हूँ, बट संडे बिल्कुल होगी 12 से 2 के बीच में।

0: All right, everyone. Unfortunately, with that amazing Ishkavala Love song, it is the end of our show. Thank you so much for everyone who tuned in today. A special thank you to all my callers from today requesting songs, participating in our giveaway, and just calling to talk to me. Your calls always make my day. Just a reminder, you are listening to 104.9 FM. I've been your RJ Rhea. I'll be here next Sunday, same time, 2 p.m. to 3 p.m. The show, The Melting Pot. As much as Sonvi, I miss you so much. I wish her the best of luck at Penn. But don't worry, we're going to make sure the show is amazing, and we're going to make sure that she was part of something great. So once again, I really appreciate everyone who tunes in. Today we talked about some fun stuff. We talked about Independence Day, back to school, and a lot more. So it's definitely been a great Sunday. I hope everyone has an amazing week, whether you're at school or not, at work. And make sure everyone stays safe in the extreme heat. Have a great week, and I'll see you next Sunday.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM.
4: कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
5: अरे सारे तो सेम है.
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
5: ओ हाँ, ये तो अलग है.
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duttime removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
8: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
9: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
8: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
6: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन Asia and enjoy 10% discount.
10: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले, सुनो,
11: हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म.
10: सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
7: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
12: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
13: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवनस आस्किंग लंच में क्या है.
12: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
14: Ye tara wo tara har tara.
9: Arre arre arre, Dallas ke aasman mein itne sare tara nahi. Business owners ke liye to sirf ek hi tara kaafi hai.
3: तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
15: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं. और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो. लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल. टिकट्स एट eventbrite.com. मोर इन्फो 214-869-2668. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप.

ये जाना सनम द टाइटल ट्रैक आई गेस आई वुड आई लाइक टू कॉल इट द टाइटल ट्रैक बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. फिलवक स्टूडियो की घड़ी में 3:09 हुए हैं. आज है अगस्त की 16 तारीख, 16th of August 2026, and it's a Sunday afternoon. I'm so glad you decided to join us. Non-stop 90s ka segment aapki khidmat mein pesh kiya ja raha hai aur aaj showcase kiye jayenge 1995 mein release hone wali hit filmon ke super hit and most loved songs. Dil Wale Dulhaniya Le Jayenge. 1001 movies you must see before you die ka hissa hai. This is placed 12th on the British Film Institute's list of top Indian films of all time. Andaza laga sakte hain aap is film ki popularity ke bare mein. It is also part of the 1000 greatest films of all time. Aur Indian film history mein to jo tehlka machaya is film ne, usse to aap sabhi waqif hain. 4 करोड़ की लागत पर बनने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 102 करोड़ से ज्यादा कमाई की एंड बना दिया इस फिल्म को ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम हिट. इस फिल्म के बारे में बहुत सी बातें की जा सकती हैं, बहुत कुछ बताया जा सकता है, पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं. इस फिल्म के डायरेक्टर थे आदित्य चोपड़ा साहब, राइट. जानते हैं उन्होंने लीड रोल में किसको लेने का प्लान बनाया था? वो चाहते थे कि इस फिल्म में ये दिखाया जाए कि यू नो लड़का अमेरिकन है और लड़की इंडियन है. ही एक्चुअली कंसिडर्ड कास्टिंग टॉम क्रूज. जी हाँ, हॉलीवुड के टॉम क्रूज को वो लेना चाह रहे थे इस फिल्म के लिए, टू क्रिएट अ क्रॉस कल्चरल रोमांस मूवी जिसमें लड़का अमेरिकन है और लड़की इंडियन. और शाहरुख खान को ये लीड रोल ऑफर करने से पहले जानते हैं किसको उन्होंने ऑफर किया था? सैफ अली खान को, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. और पहले तो शाहरुख खान ने भी इस पार्ट को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उससे पहले जो 2-3 फिल्मों में उन्होंने काम किया था, ही काइंड ऑफ डिड लाइक अ विलेनस रोल और लोगों ने बहुत पसंद किया इसे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रहने दो, मुझे हीरो बनना नहीं है और रोमांस ये सब मुझे नहीं करना. उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, पर किसी तरह चोपड़ा ने उन्हें मना ही लिया और देख लीजिए इस फिल्म ने उनकी लिटरली जिंदगी बदल दी. अच्छा, ये जो नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राइट, इट्स पार्ट ऑफ अ सॉन्ग. याद है ना आपको एक पुरानी फिल्म में किशोर कुमार साहब ने गाया ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राइट. सो गाने का तो ये हिस्सा था, लेकिन इस फिल्म के लिए आप जानते हैं इस टाइटल की सजेशन किसने दी थी? किरण खेर ने, अनुपम खेर की वाइफ, जिन्होंने इस फिल्म में शाहरुख खान के फादर का रोल निभाया था, उनकी वाइफ ने ये नाम सजेस्ट किया और इस नाम को पसंद किया गया. और आप फिर देखिए कि रेस्ट इज हिस्ट्री. Non-stop 90s, I hope you will stay with me this entire hour. I'll be playing some amazing songs and of course, saath-saath hamari gapshap bhi chalti rahegi, which I hope you'll enjoy. Segment ke baare mein, program ke baare mein, meri presentation ke baare mein, agar aap feedback dena chahein, to you're more than welcome. Studio ka number, waise to aapke speed dial pe hona chahiye, but just in case, it's 9.

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बाद जो दूसरी फिल्म टॉप हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म में शुमार होती है फॉर द ईयर 1995, इट्स नन अदर देन करण अर्जुन. एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें लीड रोल था राखी गुलजार, शाहरुख खान एज वेल एज सलमान खान, एंड हीरोइंस थी ममता कुलकर्णी एज वेल एज काजोल. इस गाने में ऑब्वियसली वी हैड काजोल एंड शाहरुख खान, आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की. नॉन स्टॉप 90s में आज हम शोकेस कर रहे हैं 1995 की हिट फिल्मों के गाने. और इस फिल्म के बारे में आपको बताती चलूं, इसको फिल्म फेयर अवार्ड्स में 10 नॉमिनेशन मिले थे, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर एज वेल एज बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस. लेकिन फिल्म सिर्फ 2 ही अवार्ड जीत सकी, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट एक्शन के लिए. अनलाइक DDALJ, इट डिड नॉट रेक इन ओवर 100 करोड़, लेकिन नॉट बैड, 6 करोड़ की लागत पर बनने वाली इस फिल्म में बनाए 43 करोड़ रुपीज. सो नॉट बैड एट ऑल. आइए अब लेकर चलते हैं आपको तीसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म के गाने की तरफ. You're listening to Dil Se on 104.9 FM. This is Amreen Hasnat.

कमर्शियल लव स्टोरी का ये गाना सुन रहे थे आप, फ्रॉम द फिल्म राजा, रोमांटिक ड्रामा फिल्म स्टारिंग माधुरी दीक्षित एंड संजय कपूर, और इस फिल्म में उनके साथ परेश रावल भी थे। 20 मिनट्स पास 3 नॉनस्टॉप 90s में आपका स्वागत है। दिस सेगमेंट ब्रॉट टू यू बाय एक्सीडेंट इंजरी अटर्नी ओमार ख्वाजा। वैसे तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो, लेकिन अगर ऐसा वैसा कुछ होता है एज एन एक्सीडेंट वगैरह, देन रिमेम्बर अटर्नी ओमार ख्वाजा इज द राइट वन टू हेल्प यू आउट, बिकॉज इट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल, स्पेशली अगर आपको पता नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कैसे डील करना है, कॉम्पेंसेशन कैसे रिट्रीव करनी है, एंड हाउ यू कैन गेट द मोस्ट एंड द बेस्ट आउट ऑफ देम। वेल, यू नीड समवन ऑन योर साइड, समवन क्वालिफाइड, समवन एक्सपीरियंस्ड लाइक अटर्नी ओमार ख्वाजा। कंसल्टेशन भी फ्री है और वो आपसे फीस भी नहीं लेते अनलेस आप केस जीत जाएं। सो व्हाट्स देयर टू लूज, गिव देम अ कॉल 469-300-5046। इनफैक्ट अभी आप क्या कॉल करेंगे, बस ये नंबर सेव कर लें इन केस गॉड फॉरबिड देयर इज एन इमरजेंसी एंड यू नीड टू कॉल हिम, आपके पास उनका नंबर होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो विजिट attorneyomar.com टू गेट डिटेल्स अबाउट ऑल द सर्विसेज दैट दे ऑफर। All right, nonstop 90s will continue. Let's take you to this next song.

हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, और ये प्यार था बॉबी डोल और ट्विंकल खन्ना के दरमियान। जी हाँ, ये गाना 1995 की आई बिलीव फोर्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बरसात का, विच वाज एक्चुअली देयर फर्स्ट मूवी फॉर ईच वन ऑफ देम। और दोनों डैड्स ने आई गेस आशीर्वाद दिया अपने बच्चों को, एंड दैट मीन्स धर्मेंद्र एज वेल एज राजेश खन्ना। इनफैक्ट इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी धर्मेंद्र साहब खुद थे, और बिलीव इट और नॉट फिल्म फेयर अवार्ड में इन दोनों एक्टर्स को बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। एज इन इनको मिला बॉबी डोल को बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड, एंड ट्विंकल खन्ना got best female debut award. So that was pretty cool. And in fact, the interesting thing about this is ki is film ka naam tha Barsaat, 10 saal ke baad ek aur film bani, as in I believe 2005 mein, jiska naam Barsaat tha aur uske hero bhi Bobby Deol hi the. You're listening to Nonstop 90s jisme aaj 1995 par hai sara focus.

0: सकता है कि ये गाना आप साथ में ना गुनगुनाएं। इस गाने के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था आशा भोसले को। जी हाँ, रंगीला फिल्म से लिया गया था ये गाना, जो कि उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ पर पिक्चराइज किया गया था। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया था और इसमें आमिर खान भी थे। दिस मूवी रिसीव्ड 14 नॉमिनेशंस एट द 41st फिल्म फेयर अवार्ड्स, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, मतलब जितने भी अवार्ड्स के लिए इन्हें नॉमिनेट किया जा सकता था नॉमिनेट किया गया। एंड इट एक्चुअली वन 7 ऑफ दोज अवार्ड्स आउट ऑफ द 14 nominations that it received. So definitely something to, I guess, commend them about. And of course, yahi se, I guess I would, if I can say, Urmila ki masoomiyat khatam, you know, like, because she was known for the movie Masoom. So yahan se unke career ka sahi taur par aagaz hua aur wo bahut aage tak gayi. Even till date, she is one of the sought after actresses. You're listening to Dil Se. Hamara ye non-stop 90s ka segment continue rahega break ke baad. So please, kahin jaiyega nahi.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges. Plus, zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTechs, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
10: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
15: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
15: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
15: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
16: वीकेंड कब प्लान अभी तक नहीं मिला। बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

मैं तो रस्ते से जा रहा था और जा रहे थे गोविंदा अवार्ड्स लेने के लिए. ही रिसीव द स्टार स्क्रीन अवार्ड स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर हिज रोल इन द मूवी कुली नंबर वन एज परफॉर्मर ऑफ द डेकेड. जी हाँ, 1995 में रिलीज हुई ये फिल्म उस साल की 6th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी, जिसे लिखा था कादिर खान साहब ने और डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने. अगर याद होगा इस फिल्म में उनके साथ कादिर खान खुद भी थे, करिश्मा कपूर भी और शक्ति कपूर भी. वाज़ अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म इंडीड. इन फैक्ट इट हैज़ अ कल्ट फॉलोइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम. लेकिन ये ओरिजिनली एक तमिल फिल्म थी जिसका रीमेक बनाया गया था. ऑब्वियसली तमिल मूवी भी हिट थी, लेकिन इस फिल्म के क्या कहने. इन फैक्ट आई थिंक इन 2020 इस फिल्म को दोबारा बनाया गया इसी नाम के साथ. आई बिलीव डेविड धवन ने अपने बेटे वरुण धवन और सारा अली खान के साथ, और इस बार कॉमिकल रोल परेश रावल साहब का था. 37 minutes past 3, इफ यू जस्ट ट्यून इन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से. मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड आई विल बी विद यू टिल 6 PM. टुडे इज द 16th of August 2026. आई एम सो ग्लैड यू आर स्पेंडिंग योर आफ्टरनून विद अस ड्यूरिंग दिस सेगमेंट नॉन स्टॉप 90s, जिसमें शोकेस कर रहे हैं हम 1995 में रिलीज होने वाली हिट फिल्मों के गाने. एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यूएस. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. ट्रस्ट कर सकते हैं आप इनकी एफिशिएंसी पर, तो कॉल कीजिए 4699429888 और विजिट agfintax.com.

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी। ये गाना अक्षय कुमार और ममता कुलकर्णी पर पिक्चराइज किया गया था। 1995 में रिलीज होने वाली ये फिल्म इट बिकेम द सेवेंथ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1995। इस फिल्म में अक्षय कुमार और ममता कुलकर्णी के अलावा गुलशन ग्रोवर, मोनीश बहल और अरुणा ईरानी भी थे। इनफैक्ट इट वाज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द खिलाड़ी फिल्म सीरीज। जैसे कि आप जानते हैं अक्षय कुमार वाज़ द लीड इन खिलाड़ी एज वेल एज मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इनफैक्ट बाद में दे वेंट ऑन टू मेक खिलाड़ियों का खिलाड़ी एंड इंटरनेशनल खिलाड़ी। ये फिल्म कमर्शियल प्रस्पेक्टिव के साथ बॉक्स ऑफिस पर बहुत पसंद की गई। इट बिकेम अ ह्यूज हिट। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस फिल्म की कहानी इट वाज लूजली बेस्ड ऑन दिस नॉवल कॉल्ड लल्लू। वेद प्रकाश शर्मा ने लिखी थी ये कहानी एंड इट वाज लाइक एन एक्शन थ्रिलर टाइप कहानी, तो उस पर उन्होंने मूवी बना दी और मूवी हिट हो गई। ऑलराइट, अब चलते हैं एथ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म के गाने की तरफ और सुनते हैं ये अगला गाना।

राम जानी फिल्म का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप. दिस इज द नाइन्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1995. आवाजें थी उदित नारायण, सोनू निगम और अलका याग्निक की, और ये गाना शाहरुख खान और जूही चावला पर पिक्चराइज किया गया था. नाउ दिस वाज एन एक्शन थ्रिलर फिल्म. कहानी थी एक ऐसे लड़के की जिसका कोई नाम नहीं था, और एक साधु पंडित मिलता है उसे. एक बार उसका नाम पूछता है तो वो कहता है जवाब में राम जाने, और यही उसका नाम पड़ जाता है. ये शाहरुख खान की चौथी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल अदा किया था बाजीगर डर और अंजाम के बाद. इनफैक्ट ये कहानी ओरिजिनल नहीं थी, इस कहानी का काफ़ी हिस्सा एक अमेरिकन फिल्म से आई वुड से चुराया गया था, कॉपी किया गया था. 1938 में रिलीज हुई थी एक फिल्म कॉल्ड एंजल्स विद डर्टी फेसेस. इनफैक्ट इस टाइप की एक बांग्ला फिल्म भी थी जिसका नाम था पुरुषोत्तम, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी. तो बस आप समझ लें कि राम जाने वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. एंड फिल्म हिट गई. इनफैक्ट फिल्म के रिलीज होने के बाद शाहरुख खान ने इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए अपनी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम. ऑलराइट, अब लेकर चलते हैं आपको 1995 की 10th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म के गाने की तरफ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. दिस पार्ट ऑफ आवर शो ब्रॉट टू यू बाय पीएमजे ज्वेल्स, एक नाम जो पिछले 60 साल से ज्वेलरी एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है, और अब यहां फ्रिस्को में उनका शोरूम खुल चुका है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर द मोस्ट ब्यूटिफुल ज्वेलरी एवर, हेड टू पीएमजे ज्वेल्स इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट.

0: हो गया। और इस फिल्म में राजा थे आमिर खान और उनकी रानी थी मनीषा कोरेला। टेकन फ्रॉम द फिल्म अकेले हम अकेले तुम, आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की, टू ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स। ये फिल्म कॉपी की गई थी काइंड ऑफ थोड़ी बहुत फ्रॉम एन अमेरिकन मूवी, क्रेमर वर्सेस क्रेमर, जो कि 1979 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन मिली मनीषा कोराला को फॉर द 41st फिल्म फेयर अवार्ड। ये और बात है कि वो जीत नहीं पाई, लेकिन फिर भी शी डिड रिसीव द नॉमिनेशन। इनफैक्ट काफ़ी टाइट इनकी कंपटीशन थी, एज इन इस फिल्म की कंपटीशन विद राम जाने, जो इससे बस कुछ ही पहले रिलीज हुई थी। होप यू गाइज एंजॉयड नॉन स्टॉप 90s में। आज हमने आपको 1995 में रिलीज होने वाली हिट फिल्मों के ऑसम गाने सुनवाए। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक ने और गाने के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। Get ready for a week of three-digit temperatures. Right now, we're looking at 100 degrees Fahrenheit here in McKinney. Kuch aisa hi mausam hoga kal bhi, high of 102 and a low of 81 degrees Fahrenheit. But keep it here on 104.9 FM. We'll keep you cool.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
7: That magic removal ho. Love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
8: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
9: Samasya ka pakka samadhan.
8: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: Mere kal wale khane mein dosa, आने वाले खाने में डोसा।
11: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
12: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
13: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
14: अरे वो केक आया क्या?
15: डीजे कौन हैंडल करेगा?
14: डेकोर वाले को कॉल किया,
15: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
14: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया।
15: ऑसम इवेंट्स?
14: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड अ टीम विल हैंडल एवरीथिंग।
15: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म।
14: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ।
13: कॉल नाउ एट 214-725-7466, दैट्स 214-725-7466 एंड टर्न योर सेलिब्रेशन इनटू एन ऑसम इवेंट।
16: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
17: क्या मतलब?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
17: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails, and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
20: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
21: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर, या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
20: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
0: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त समरीन हसनात, एंड आई विल बी विद यू टिल 6 PM. फिलवक स्टूडियो की घड़ी में इट्स 5 मिनट्स पास्ट 4 ऑन द 16th of August 2026. आई होप यू आर एंजॉयिंग योर वीकेंड सो फार, एंड आई नो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन आपने फनीशा को चुना, उसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं. कमर्शियल ब्रेक से पहले हमारा सेगमेंट पेश किया जा रहा था नॉन स्टॉप 90s, जिसमें हमने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे हिट 90s के गाने सुनवाए. आई होप यू एंजॉयड माई सिलेक्शन, एंड आई एम होपिंग कि ये अगला सेगमेंट भी आपको ज़रूर पसंद आएगा. हर संडे की तरह आज भी 4 से 5 बजे के दरमियान विल होस्ट द सेगमेंट टाइटल्ड शब्द, जिसमें कोई एक वर्ड, कोई एक लफ्स चुनते हैं हम और उससे रिलेटेड आपको सुनवाते हैं बेशुमार गाने, कुछ नए कुछ पुराने. शुरुआत करते हैं पुराने गानों से और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं. हमेशा सबसे पहला गाना तो सबसे ज्यादा पुराना होता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ एज वेल. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सॉन्ग और आप गाने को सुनिए और गेस करने की कोशिश कीजिए कि आज का वर्ड क्या है. वर्ड या लफ्ज आपको हमेशा गाने की पहली दो लाइनों में ही मिल जाएगा, एंड रिमेंबर कि फिर उसी वर्ड को लेकर हम आपको सुनवाएंगे पूरे सेगमेंट में गाने हर तरह के. सो आपको अलग अलग गाने सुनने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप के, यू नो, पुराने गाने, नए गाने, फास्ट गाने, स्लो गाने, लव सॉन्ग्स, डांस सॉन्ग्स, हर तरह के गाने. सो इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन, एंड देयर इज अ वेरी नाइस वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स दैट यू गेट टू हियर ड्यूरिंग द शब्द सेगमेंट. सो चलिए हमारी गप शब्द चलती रहेगी, आपको सुनवाते हैं सेगमेंट का पहला गाना. कोशिश कीजिए गेस करने की, और अगर आपको लगता है कि आप गेस कर पाए हैं तो कॉल कीजिए और इनाम के हकदार बनिए. आपको $10 फूड क्रेडिट मिलेगा चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से. चंडीगढ़ बाइट्स विच इज़ लोकेटेड इन एलन ऑफ मैकडर्मट ड्राइव, और इनकी खास बात यह है कि मंडे थ्रू फ्राइडे रोज इनकी एक स्पेशल थाली होती है, और हर बार उसमें अलग अलग किस्म की आपको डिशेस मिलती है. सो इट्स नॉट द सेम थाली. मंडे को जो थाली खाएंगे ना, वो वेंसडे को नहीं मिलेगी. सो एवरी टाइम देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट डिशेस दैट यू गेट टू एंजॉय ऑन दैट थाली मंडे थ्रू फ्राइडे. उनकी तरफ से $10 का फूड क्रेडिट है आपके बिल के लिए. सो आप अगर सही जवाब देंगे तो जीत भी सकते हैं. 972-235-5555 है हमारे स्टूडियो का नंबर.

देवानंद और मधुबाला पर पिक्चराइज किया गया ये गाना आप सुन रहे थे, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बहुत सारी कॉल्स आई, लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स गेस करने की कोशिश किए। थैंक यू सो मच, यू ऑल डिड अ ग्रेट जॉब। लेकिन फाइनली बिंदिया ने दे दिया सही जवाब। आज का शब्द, आज का वर्ड है अच्छा, अच्छी या अच्छे, और उसी से रिलेटेड सुनवाएंगे हम आपको बहुत से अच्छे अच्छे गाने।

चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, मैडम नूर जहां जी की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत पुराना गीत एज पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट शब्द, जिसमें आज का वर्ड है अच्छा, अच्छी या अच्छे।

अच्छा तो हम चलते हैं। आन मिलो सजना फिल्म से लिया गया ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की आवाज में सुन रहे थे आप। राजेश खन्ना और आशा पारिक पर पिक्चराइज किया गया था। फॉर दोज़ ऑफ यू जस्ट ट्यूनिंग इन, फिर से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं। शब्द का है ये सेगमेंट जिसमें हम कोई एक वर्ड चुनते हैं और उसी से लेकर आपको सुनवाते हैं मिले जुले गीत, पुराने भी और नए भी। शुरुआत पुराने से करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं। 50s से शुरुआत की, अब 70s पर पहुंच चुके हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं सेगमेंट को। आज का वर्ड, आज का लफ्ज, एक्चुअली इट्स वी चोज थ्री वर्ड्स बट देर ऑल रिलेटेड, अच्छा, अच्छी और अच्छे।

ये मीठे सुरीले गाने, स्पेशली दोपहर के वक्त व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से. इट्स 25 मिनट्स पास 4 एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय वनेसा इवेंट्स. यू नो, इफ यू आर नॉट एन इवेंट कोऑर्डिनेटर एंड यू नीड समवन टू हेल्प यू आउट बिकॉज देयर इज सो मच टू डू व्हेन इट कम्स टू इवेंट्स, वेदर इट्स अ हाउस वार्मिंग और अ वेडिंग, व्हाटएवर इट इज, वनेसा इवेंट्स कैन डू इट ऑल फॉर यू. एवरी लिटिल डिटेल दे टेक केयर ऑफ इट फॉर यू. दे मेक planning simple by bringing it all together. Venue selection, decor, photography, catering, jo bhi aapko unki help chahiye, and they do the catering exclusively from Basera Grand. So while you're busy making memories, they make sure they take care of everything else. You can call Hari Basera at 469-442-8770. That's Vanessa Events. All right, continue करते हैं शब्द का सेगमेंट. एंड आज हम सिर्फ वही गाने आपको सुनवाएंगे जिनमें है वर्ड अच्छा, अच्छी या अच्छे. पहुंच चुके हैं हम 80s के फिल्मी गानों की तरफ.

0: हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। राम बलराम का ये शोक और चंचल गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में सुन रहे थे आप। अमिताभ बच्चन और रेखा जी पे पिक्चराइज किया गया था। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द शब्द सेगमेंट आफ्टर द ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल मूव ऑन टू द नाइन्थ।
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
8: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं ही दो।
5: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
13: Is Raksha Bandhan Choctaw Casino and Resort Durant ke saath celebrate kijiye wo rishta jisme nok chok bhi hai, dosti bhi and a lifetime of unforgettable memories. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस
2: चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। 21 or older to participate. Terms and conditions apply. Please play responsibly.

बागी फिल्म से लिया गया ये गाना। आप सुन रहे थे अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। ये गाना सलमान खान और नगमा पर पिक्चराइज किया गया था। वेलकम करती हूँ एक बार फिर आपको 104.9 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर। आई एम योर होस्ट अमरीन हसना। तो इस वक्त पेश किया जा रहा है आपके लिए शब्द का सेगमेंट, जिसमें आज का वर्ड, आज का लफ्ज है अच्छा, अच्छे या अच्छी। सो उसी से रिलेटेड गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, कुछ नए कुछ पुराने। पुराने गानों से यानी कि 50 से शुरुआत की थी और अब देख लीजिए हम 90s तक पहुंच चुके हैं। आई होप यू आर एंजॉयिंग आवर सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक। अपने फीडबैक के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 972-235-5555। दैट्स 972-235-5555।

अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में आप फिल्म बेवफा सनम से लिया गया ये गाना। आइए सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म कुछ ना कहो से लिया गया ये बहुत ही प्यारा सा मीठा सा गाना। आइए सुनते हैं।

कि आप मुझे अच्छे लगने लगे. आई होप ये गाने आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से. विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग. दिस इज अमरीन हसनाज. शब्द का है सेगमेंट और आज एक वर्ड नहीं बल्कि मल्टीपल वर्ड सेलेक्ट किए हमने. अच्छा, अच्छे एंड अच्छी, और उसी से रिलेटेड हम आपको अच्छे अच्छे गाने सुनवा रहे हैं. आई होप यू आर एंजॉयिंग आवर सिलेक्शन.

तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। सुन रहे थे आप उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये गाना, जो कि सलमान खान और भूमिका चावला की फिल्म तेरे नाम से लिया गया था। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। नाम उन्होंने बड़ा सोच के रखा, बिकॉज ए वेरी passionate about taking care of their patients. और आपके साथ वो सिर्फ 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, बल्कि पूरे 30 मिनट बिताते हैं, because they want to make sure कि वो अपने हर patient को पूरी अपनी undivided attention दें और उनकी जो भी situation है उसे समझें। At Passion Healthcare, आप सिर्फ एक patient नहीं बल्कि family का हिस्सा हैं, and they have been serving this community for a while, and they make sure कि 30 minutes में वो जितना भी आपका ख्याल कर सकें, अब चाहे वो आपका annual physical है या कोई आप anxiety care के लिए आए हैं, कोई alcohol related liver problems है, vitamin B12 की deficiency है, कुछ testing करवानी है, मतलब जो भी आपका health concern या issue है, Passion Health Primary Care is there for you. और आप appointment ले सकते हैं 214-666-6259 to book your appointment. In person जाके उनसे मिलिए and feel the difference कि एक ऐसा clinic जो वाकई अपने patients का ख्याल रखता है। आइए शब्द segment को continue करते हैं और चलते हैं इस अगले गीत की तरफ।

I'm trying to remember, इस फिल्म का नाम आरक्षण था या आक्रोश था, कुछ ऐसा तो नाम था। शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक, मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की थी आवाज, एंड आई बिलीव सैफ अली खान और क्या नाम है उनका, दीपिका पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। ऑलराइट फोक्स, आई रियली एंजॉयड प्लेइंग ऑल दीज वंडरफुल सॉन्ग्स विद द वर्ड अच्छा, अच्छे एंड अच्छी। तो बस अब जाने का वक्त आ गया है, एज इन मेरे जाने का नहीं, पर ये सेगमेंट खत्म होने का, एंड जाते जाते आई गोना प्ले द परफेक्ट सॉन्ग, एज इन इस सेगमेंट को कंक्लूड करने के लिए परफेक्ट सॉन्ग, जिसकी सजेशन दी थी मलिक साहब ने। थैंक यू सो मच सर, मैरीलैंड से उन्होंने कॉल किया, ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, सो आपके लिए भी है ये गाना और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, और गाना मेरी तरफ से भी है सबके लिए।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte ek door se shuru hote hain aur ek anmol nishani ke saath hamesha ke liye amar ho jate hain. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
8: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
9: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है?
8: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: Beta, 95% aaye?
11: Haan, mummy.
10: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
12: Mera?
10: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
12: Whoa!
13: School ka report card saal mein ek baar aata hai, but business ka report card har mahine. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: Genie, hukam meri akal. Hum aaj party ke mood mein hain. Ek aisi jagah batao jahan meri entry hi royal ho.
16: Miraj Lounge chaliye meri akal. Luxury limousine rides aapke intezaar mein hain.
17: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
16: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
17: और एंटरटेनमेंट,
16: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
17: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
16: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
18: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देयर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम under Fannie and Freddie for confirming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
19: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
20: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
19: कैसे?
20: पेज 3 ईटरी?
19: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
20: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
19: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
0: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
21: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
11: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तमरीन हसनात, एंड आई बी विद यू टिल 6 पीएम. इट इज 5 minutes past 5 ऑन द 16th of August 2026 एंड इट्स ए संडे इवनिंग. नाउ आई नो ये वीकेंड सभी के लिए बहुत हेक्टिक था. 14 अगस्त को पाकिस्तान के जश्न आज़ादी था और फिर 15th को इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया. सो लॉट्स गोइंग ऑन, लॉट्स ऑफ इवेंट्स वर हैपनिंग. आई डिड होस्ट अ शॉर्ट सेगमेंट ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस डे एंड आई फेल्ट सिंस बीइंग बोर्न इन पाकिस्तान आई शुड डू एटलीस्ट वन लिटल सेगमेंट फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे. सो नॉट नेसेसरली क्योंकि अब दिन गुजर चुका है. So I'm not going to do patriotic songs, but I would like to dedicate the next 1 hour on playing some beautiful Pakistani songs. Agar aapke paas bhi koi suggestion hai, to aap call kar sakte hain 972-235-5555. And this part of our show brought to you by Tanishq Jewelers. Ye to sabhi kehte hain, diamonds are forever. Actually, they're not just forever. They're even more irresistible. During the Tanishq Festival of Diamonds, you get to enjoy up to 25% off on diamond value and making charges, plus 0% deduction on the exchange of all gold above 18 carats. So come celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Certain terms and conditions apply, and their store is located in Frisco.

ओरिजिनल साउंडट्रैक सुन रहे थे आप आसिम अजहर की आवाज में. होप यू गाइस एंजॉयड इट. एंड दिस इज वन ऑफ द पाकिस्तानी ड्रामा सॉन्ग्स दैट आई जस्ट प्लेड फॉर यू. जैसे कि मैंने बताया, जस्ट बिकॉज यू नो वी जस्ट हैड पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, तो मैंने सोचा कि हम अपना एक घंटा डेडिकेट करेंगे टू पाकिस्तानी सॉन्ग्स टुडे. सो इफ यू हैव अ रिक्वेस्ट, फील फ्री टू कॉल. और सुहेल और मरियम ने बिल्कुल वक्त नहीं लगाया, झटपट से कॉल कर दी और अपने गाने की कर दी फरमाइश. सो दिस सॉन्ग गोइंग आउट टू मरियम फ्रॉम सुहेल.

ना तू आएगी ना ही चैन आएगा। जुनैद जमशेद की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना सुहेल की फरमाइश पर, वाज गोइंग आउट टू हिज लवली वाइफ मरियम। कमल की रिक्वेस्ट पर आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: ऐसा कैसे हो सकता है कि
1: एक तरफ आग लगी हो दूसरी तरफ आज तक ना पहुंचे।
2: मोहब्बत करता हूं मैं आपसे, मोहब्बत करता हूं मैं।
3: ये सब करने से मैं मेहताब को भूल जाऊंगा, ये आपकी भूल है।

ये मेरा दीवानापन है ड्रामे का ओरिजिनल साउंड ट्रैक सुन रहे थे हम कमल जी की रिक्वेस्ट पर. इट्स 17 मिनट्स पास्ट 5. यू लिस्टिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM और आई होप कि आप उतने ही दिल से सुन रहे हैं जितने दिल से मैं इसे आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ. बिट्टू जी ने फरमाइश की है मलिका तरन्नुम नूर जहाँ जी के इस पुराने गीत के लिए.

लैना मेरा नाम मैं था मर जानिया, मलिका तरन्नुम नूर जहाँ जी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये पंजाबी गीत। आज के इस सेगमेंट में हम आपको सुनवा रहे हैं आपके फेवरेट पाकिस्तानी गीत एज अ सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक एज वी जस्ट सेलिब्रेटेड पाकिस्तान्स इंडिपेंडेंस डे ऑन द 14th ऑफ August. अगर आपके पास किसी गाने की फरमाइश है फील फ्री टू कॉल अस 972-235-5555.

नसीबोलाल और आबिदा परवीन की कोलैबोरेशन टू झूम कोक स्टूडियो सीजन 14 24 मिनट्स पास्ट 5 यू आर लिस्टिंग टू दिल से ऑन 104.9 एफएम. आज एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑन 14 आपको सुनवा रहे हैं हम कुछ स्पेशल पाकिस्तानी गाने ऑल बाय रिक्वेस्ट. 9722355555 है हमारे स्टूडियो का नंबर. This one's for you, Salma ji.

0: That was a beautiful song. I hope all of you enjoyed it. The weather is hot. That's right. 3-digit temperatures. Aur taiyar rahiye aap, kyunki ye mausam pura hafta 3-digit temperatures mein rahega. Ye main nahi keh rahi hoon. Ye weather forecast keh raha hai. For example, today's high was 102. Ab thoda kam hua hai. Ye sirf 2 degrees. So right now in the McKinney area, it's 100 degrees Fahrenheit. And yes, it's sunny. And yes, it's hot. The low today was 82 degrees Fahrenheit. Tomorrow, we're expecting pretty much the same kind of weather. It's 102 degrees for a high and 81 for a low. Main ye weather forecast aapko isliye bhi batati hoon taki aap apna khayal rakh sakein. I know we do need to go out and there's nothing wrong with that, but you want to make sure you protect yourself, especially your skin. Apni skin ka khayal rakhein. Sirf isliye nahi ki aapka rang kala par jayega, balki ye jo suraj ki shuaen hoti hain, kuch aisi bhi hoti hain jo ki aapki skin ke andar penetrate karke bimariyan ban sakti hain. You know, you can get heat stroke or you can get some sort of a skin condition or cancer too, you know. So it's better to be safe. So make sure that you use some sort of sunblock, at least SPF 50, taki aap apna khayal rakh sakein.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: ये तारा वो तारा हर तारा।
12: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है।
2: तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
12: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 2148692668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

अली असमत और आबिदा परवीन की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत साकिब साहब की फरमाइश पर. इट इज़ 38 मिनट्स पास्ट 5 ऑन द 16th of August 2026 संडे इवनिंग. आप लोग मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट. एंड वी आर प्लेइंग पाकिस्तानी सॉन्ग्स ऑल बाय रिक्वेस्ट आज एज ए आई गेस जस्ट टू सेलिब्रेट पाकिस्तानी म्यूजिक एज 14th ऑफ ऑगस्ट वॉज पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे. लेकिन चूंकि मैं नहीं थी तब 14 तारीख को ऑन एयर, सो आई थॉट माइट एज वेल डू दिस टुडे. बेटर लेट देन नेवर, है कि नहीं? ऑलराइट, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द शाक्टा रक्षाबंधन इवेंट. नाउ दिस रक्षाबंधन, Fun Asia Radio and Shark Tower Casino and Resort in Durant want to hear your most unforgettable memory with your brother or sister. So, 1 minute ka voice note record kare aur usko WhatsApp kijiye 214-837-7147 aur aap jeet sakte exciting daily prizes jaise ki dining experiences, entertainment, resort stay. और ग्रैंड प्राइज होगा एक अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट शॉक टॉक कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन डुरांट. इसके लिए आपको सारी डिटेल्स फन एशिया के सोशल मीडिया पेजेस पर मिल जाएंगी. दैट्स शॉक टॉक कैसीनो एंड रिजॉर्ट डुरांट. और यू नीड टू बी एट लीस्ट 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. ओके, योर स्टोरी नीड्स टू बी एट लीस्ट अ मिनट. और आप अगर कुछ भेज चुके हैं या भेजने वाले हैं, और यू कैन ऑलवेज शेयर दैट विथ मी. आप मुझे कॉल करके अपना नाम और फ़ोन नंबर दे दें, सो वी मेक श्योर दैट आपकी एंट्री आगे तक पहुंच जाए. स्टूडियो का नंबर तो होगा आपके पास 972-235-5555. और अब सुनते हैं मेरे एक फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर का गाना.

सानू चन माया तेरी ठगिया ने मारिया। जैन जोहेब और कुरुतुलेन बलोच की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत, और अब लेकर चलते हैं आपको आखिरी गाने की तरफ। आई होप यू एंजॉय टुडेस सेगमेंट व्हिच वाज शोकेसिंग पाकिस्तानी सॉन्ग्स एज अ सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान्स इंडिपेंडेंस डे। इसी आखिरी गाने के साथ चाहूंगी आपसे इजाजत, और अब आपसे अगले सैटरडे को होगी मुलाकात बिटवीन 3:30 and 6 PM और संडे को 3 to 6 के दरमियान। दिस इज अमरीन हसनात साइनिंग ऑफ फॉर दिल से।

डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा। स्वागत करती हूं एवरी संडे की शाम आप सभी का। एवरी संडे की शाम दोस्तों रहता है आपका और मेरा साथ 6 से 8। जुड़ रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए।

तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फॉगी, गर्मी वाली कैसे भी हो, हमें तो अच्छी लगती है बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल। गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। कल दोस्तों 15th August था और हमने हमारा इंडिपेंडेंस डे बहुत ही जोरों शोरों से मनाया है। तो चलिए इसी तरह से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बधाई देती हूँ और हमारे शो की शुरुआत करती हूँ इस बेहतरीन गाने के साथ।

ऑसम ऑसम ऑसम। दोस्तों जब भी ये गाना सुनती हूँ, अभी इस मूवी को रिलीज़ होकर और इस गाने को सुनकर बहुत अभी साल हो चुके हैं, बट फिर भी जब भी ये गाना सुनती हूँ रेडियो पे या फिर ऐसे कहीं जाते हुए या फिर अगर खुद मैं खुद होके ये गाना सुनती हूँ तो आंखें भर आती है और पूरा गूज बम्स मोमेंट रहता है। इतना असर है इस गाने का और अरिजीत सिंह ने इसको इतने ब्यूटिफुल तरीके से गाया है कि क्या ही बताए। आई होप द फीलिंग्स आर म्यूचुअल। आप सभी ने इंडिपेंडेंस डे बहुत ही जोरों शोरों से और बहुत ही खुशहाली के साथ मनाया होगा, यही अपेक्षा के साथ हमारे शो की अच्छे से शुरुआत करते हैं और सुनते हैं अमेजिंग गाने, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के।

0: But Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya cham. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है, ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
3: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है, या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
6: Fan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
3: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
7: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
8: Don't touch that dial. Keep listening.

दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे शो का वैसे कोई थीम नहीं है। अगर आपको आपके पसंद का गाना सुनना है 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, आप जल्दी से जल्दी कॉल करके गाने बता सकते हैं। बट जो भी गाने आप रिक्वेस्ट करेंगे इट शुड बी फ्रॉम द ईयर 1990 एंड अबव, दैट इज द ओनली कंडीशन। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक।

भाई अच्छा गाना, उसकी दो लाइनें ना गुनगुनाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मेरे रूल बुक के खिलाफ है। तो जैसे ही अच्छा गाना आता है, जैसे ही अच्छे सिंगर्स ने अच्छा गाना गाया होता है, उसकी दो लाइनें यहाँ पर मैं जरूर गुनगुनाती हूँ। सो ये रहा आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना, टेकन फ्रॉम द मूवी आजाद अजीबो गरीब। अगले गाने की तरफ जाएंगे दोस्तों, उसके पहले बता दूं दैट योर ड्रीम होम मे बी बेटर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज। सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इनटू रियलिटी विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स। देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस टेलर्ड टू योर नीड्स, वेदर यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम, अपग्रेडिंग और रीफाइनेंसिंग। स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टुडे। यू कैन कॉल देम, द नंबर टू कॉल इज 972-245-5626 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स। ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन।

ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने यहाँ पर चलते रहेंगे, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। आपके पसंद का गाना अगर आपको सुना है 972-235-5555 इज द नंबर टू कॉल द स्टूडियो। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्यूटीफुल ट्रैक। मराठी गाना है दोस्तों, बट आई होप आप सभी को बहुत पसंद आएगा, इन द वॉइस ऑफ राधिका भिडे।

आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, बहुत ही प्यारा सा मराठी गाना इन द वॉइस ऑफ राधिका भिड़े, इट वॉज ऑल फॉर यू। अगर आपको कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है, इफ़ यू गेट इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लीप एंड फॉल इंसिडेंट, अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल, यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कंपेंसेटेड। You don't pay until you win. For a free consultation, you can call them. The number to call is 469-300-5046 or you can visit their website, which is attorneyomar.com.

ब्यूटिफुल अगेन वन मोर अमेजिंग सॉन्ग संग बाय मान पनू. ये दोस्तों ये दो सिंगर्स राधिका भिड़े एंड मान पनू ये आए थे आई पॉप स्टार के रियलिटी शो में और इनके जो गाने हैं वो ओरिजिनली इन्होंने ही बनाए हैं, इन्होंने ही कंपोज किए हैं और इन्होंने ही उनको ट्यून दी है. सो इनकी ओरिजिनलिटी बहुत ही अमेजिंग है. एंड ये जो पहला गाना आपने सुना मन धावत या दैट वॉज ऑल्सो संग एंड रिटन बाय राधिका भिड़े हरसेल्फ. और ये जो गाना था मान पन्नू का आई एम डन, ये भी आई पॉप स्टार में इन्होंने गाया था, इनका डेब्यू परफॉर्मेंस था इसमें. एंड अमेजिंगली क्रिएटिव पीपल, टैलेंट बहुत ही अमेजिंग था इन दोनों का और गाने भी इन दोनों के बहुत ही अमेजिंग थे. आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे. जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है उन सभी को बता देती हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को. और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी. एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है दोस्तों आपका और मेरा साथ और आप भी जुड़े रहते हैं हमारे साथ हमारी फोन लाइन के जरिए 9722355555 के जरिए. अगर कोई गाना सुनने की इच्छा आकांक्षा या मनोकामना है या फिर कोई गाना किसी को डेडिकेट करना है आप मुझे कॉल कर सकते हैं. विद दैट आपको लेकर चलती हूँ इस अगले और बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन गाने की तरफ. इट इज टेकन फ्रॉम द मूवी पल. जी हाँ, ये पल मूवी विजय वर्मा की डेब्यू मूवी थी और इसमें का ये जो गाना है पल जो अरिजीत सिंह ने गाया है वो भी अमेजिंग है. किसी किसी लोगों ने पहली बार अगर ये गाना सुन रहे हैं तो आई होप आप सभी को ये गाना पसंद आएगा. एंड अगर पसंद आया तो कीजिए मुझे कॉल. चलिए विद दैट लिसन टू दिस सॉन्ग.

0: Breaking news is now on page 3. Dallas has got a new flavor at Hub 21. Page 3 eatery where bold Indian street food meets modern flair. Kebabs, chaats, fusion bites and mocktails. Vibrant vibes for brunch, lunch or dinner. Perfect for foodies, dates and flavor chases. Visit page3eatery.com for further details. छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, कहीं मत जाइएगा. स्टे ट्यून्ड टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. दिस इज योर होस्ट आरजे अपूर्वा.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम केजीएमपी 104.9 एफएम एचडी1 पायलट पॉइंट टेक्सास. साइमलकास्टिंग ऑन KTCG